नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वाग रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरे की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई दी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने,

दर्शनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण सात दिन से व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करूँ, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे डेम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है गांव विस्तार माते पशुधन स्वास्थ्य ने टीकाकरण नी हूँ आवश्यकता है आनु हूँ उद्देश्य है ने आंत की हूँ लाभ थे सके। तो भाई बोनो अण विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक की घना कानी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इन पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमरते रहसु आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वाकड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: માઇન બુનુ ગીત નો આયશો પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સપનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હ અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ભાઈ બોનું ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હ ગાંવ વિસ્તાર માટે પશુધન સ્વાસ્થ્ય એ ટીકાકરણની હું આવશ્યકતા હે આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી મનીષજી તો સૌથી પહેલા આપણે હમરી લણાની વાત મોરે કરા આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્તે અંજલિ જી
0: સર આપકા બહુ બહુ સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહુ બહુ ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે વાતચીત કા વિષય હૈ કે ગાંવ સ્તર પર પશુધન સ્વાસ્થ્ય ઓર ટીકાકરણ કી આવશ્યકતા ક્યું હૈ ઓર ઇસકા ક્યા મહત્વ હૈ
1: જી બિલકુલ અગર હમ હમારે ક્ષેત્ર કી બાત કરે જો આદિવાસી બહુલ ક્ષેત્ર હૈ યહાં પે જો કૃષિ પરંપરાએ હૈ ઉનમેં પશુધન ઇસકી રીઢ માની જાતી હૈ
0: બિલકુલ
1: ઓર પશુપાલન સિર્ફ कृषि के लिए आवश्यक नहीं है पशुधन का पालन कई आर्थिक प्रणालियों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
0: बिल्कुल
1: वे दूध मांस अंडे और श्रम जैसी कई सेवाएं हमें देते हैं ग्रामीण परिवारों की आजीविका में इसीलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है
0: बिल्कुल
1: अब अगर हम बात करें कि उनके स्वास्थ्य और टीकाकरण की तो पशुधन कई बीमारियों के प्रति बहुत जो है संवेदनशील होते हैं और ये बीमारियां या ये उनके स्वास्थ्य पे पड़ने वाले प्रभाव उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उत्पादकता और उनके विकास को प्रभावित करते हैं
0: जी जी।
1: जिसके दीर्घकालिक परिणाम कभी कभी बहुत ही खराब होते हैं तो पशु चिकित्सा सेवा और टीकों तक जो पहुंच अभी कम है हमारे पशुपालकों की इसी के कारण इनके स्वास्थ्य पे पड़ने वाले विपरीत प्रभाव जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं
0: बिल्कुल
1: इसका सीधा सीधा एक परिणाम पशुपालक को भी होता है कि उनका दो तरफा आर्थिक नुकसान होता है
0: बिल्कुल
1: एक पशुधन का उत्पादन क्षमता कम होना और दूसरा उनकी जेब पर पड़ता है
0: बिल्कुल
1: क्योंकि ज्यादा बीमार होने पे उनको ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं तो इस दोहरे नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि ग्राम स्तर पे हम स्वास्थ्य और टीकाकरण को जो है बहुत स्वास्थ्य जांच और उसका निदान और इसी के साथ में जो है टीकाकरण इसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इसकी आवश्यकता से हम इनकार नहीं कर सकते
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से गांव स्तर पर स्वास्थ्य और टीकाकरण की जो आवश्यकता है उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए यही सर इसके फायदे क्या होंगे यानी कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा हमारे लिए
1: जी बिल्कुल देखिए अगर हम बात करें कि ग्राम स्तर पे यदि पशुधन स्वास्थ्य और टीकाकरण नियमित होने लगे तो सबसे पहला तो है कि हमारे पशुधन के स्वास्थ्य में जो है सुधार होगा
0: बिल्कुल
1: यानी कि स्वास्थ्य जांच जो कि वैसे भी सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती है तो हमारे पशुधन की नियमित स्वास्थ्य जांच हो समय समय पर पशुधन को प्रभावित करने वाली जो बीमारियां हैं उनको रोका जा सकता है
0: जी हाँ।
1: और उनके उपाय अपनाए जा सकते हैं इससे हम बोल सकते हैं कि हमारे पशुधन के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा और उत्पादकता लगातार बढ़ती जाएगी अब अगर हम टीकाकरण की बात करें तो आमतौर पर गंभीर बीमारियों के खिलाफ व्यापक टीकाकरण सुनिश्चित करने से हमारे पशुधन में आने वाली कुछ बड़ी बीमारियों को जो है हम नियंत्रित कर सकते हैं
0: जी हाँ।
1: या फिर उनको होने से या आने से पूरी तरह से हम रोक सकते हैं जिससे टीकाकरण जिन बीमारियों के लिए होते हैं वो अगर पूरी तरह रुक जाएगी तो इससे होने वाले प्रभाव को जो है हम पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं
0: बिल्कुल सर
1: इसी के साथ हमें ये भी लगता है कि हमारे किसानों को जो है सशक्त बनाना होगा पशुधन के स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए जो हमारे पारंपरिक ज्ञान है उनके सर्वोत्तम तरीके और इसी के साथ साथ आवश्यकता होने पे या समय समय पे हमें पशु स्वास्थ्य सेवाओं का भी जो है उपयोग करना चाहिए
0: जी बिल्कुल
1: इसी के साथ साथ हमें हमारे जो किसान हैं पशुपालक हैं इनको ये जानकारी भी देना आवश्यक है कि कब कौन से समय कौन सा टीकाकरण करवाना है या किस तरह से जो है पशुधन के लक्षणों को देख के वो ये अनुमान लगा सके कि ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं है। अगर वो लक्षणों को देखना पहचानना सीख जाएंगे तो होने वाले बड़ी बीमारियों को जो है आसानी से रोका जा सकता है। तो इसीलिए हमको लगता है कि हमें हमारे किसानों को भी जो है सशक्त बनाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो रोग एक तरह का बोझ होता है, चाहे वो किसी को भी हो।
0: बिल्कुल।
1: सामान्य रूप से हमको भी सामान्य सिरदर्द होता है तो हमारे मन में ये भावना आती है कि हे प्रभु ये सिरदर्द क्यों है, ये नहीं होता तो मैं कुछ बेहतर कर लेता, मैं काम निपटा लेता। तो इसी तरह से जब हमारे पशुधन पे भी कोई रोग या बीमारी आती है तो वो उस पे बोझ हो जाता है।
0: जी हाँ।
1: तो इसका एक कारण ये भी है कि पशु चिकित्सा सेवाओं तक जो है हमारी यानी कि पशुपालकों की पहुंच जो है सीमित है और इसी के कारण बीमारियों का बोझ उन्हें झेलना पड़ता है। जैसे यदि अभी आने वाले समय में भी हम बात करें तो इस समय क्योंकि अब बारिश का समय नजदीक है और ये समय है खुरपका मुंहपका यानी कि FMD का टीका लगवाने का, तो इसके कारण जो हमारे पशुधन को तकलीफ होती है वो खड़े होने में भी तकलीफ होती है क्योंकि उनके खुर जो है पक जाते हैं, उनमें से मवाद आने लगता है और वो पांव को टिका नहीं पाते। इसी के साथ साथ इसके जो विषाणु हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करके उनके मुंह में भी घाव और सूजन बना देते हैं जिससे वो खा नहीं पाते। तो इतनी घातक बीमारी को होने से रोकने का बहुत आसान उपाय है कि बस अब हम हमारे पशुधन के टीकाकरण में जो है FMD का टीका जरूर लगवाएं। हमारे जो भी मादा पशुधन हैं उनमें ब्रुसेलोसिस और बोवाइन के टीके भी जो है हमको लगवाना चाहिए, तो ये इनको तपेदिक जैसी बीमारियों से भी जो है बचाते हैं। और सभी तरह से यदि बोला जाए तो क्योंकि पशु चिकित्सा सेवाएं बहुत न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हैं या लगभग मुफ्त हैं, तो इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा के हम हमारे पशुधन के रोग बोझ को कम कर सकते हैं और हमारे पशुपालकों के आर्थिक बोझ को भी कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य जांच जो ग्राम स्तर पर होती है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है और उसके क्या फायदे होते हैं। यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए क्या क्या गतिविधियां की जाती हैं और उसके क्या अपेक्षित परिणाम हमें मिल पाएंगे।
1: तो यदि हम स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के लिए गतिविधियों की बात करें तो पहला तो होगा कि हम स्वास्थ्य जांच और निदान के लिए जो है उन समस्याओं की पहचान करें जिसके लिए हमारे पशुधन का जो है स्वास्थ्य जांच और निदान करवाना है।
0: बिल्कुल।
1: तो हम जो पहचानी गई स्थितियां हैं उसके अनुसार भी बाकी हमारे जो गांव के किसान हैं उनके साथ भी बात कर सकते हैं कि क्या उनके पशुधन में भी इस तरह की स्थितियां चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से देखी जा रही है या उनको ऐसा लग रहा है क्या। तो इसी के साथ में जो है टीकाकरण अभियान के रूप में हम जो है इसको ले सकते हैं ग्राम स्तरों पे।
0: बिल्कुल।
1: तो जो भी प्रचलित बीमारियां हैं जिनके खिलाफ टीके जिस समय पे लगाए जाते हैं, तो एक तो किसानों को जो है अपने स्तर पे उसका रिकॉर्ड रखने की थोड़ी सी आदत रखना होगी ताकि उन्हें ये पता रहे कि ये वाला टीका लग चुका है और ये वाला टीका बाकी है, क्योंकि कुछ टीके ऐसे हैं जिनको साल में 2 से 3 बार तक लगवाना पड़ता है यानी कि उनका बूस्टर डोज दिया जाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा वो उसके लिए या तो कहीं पे लिख के रख लें कि ये टीका लग चुका है और अब कितने समय के बाद वापिस इसको लगवाना है। तो यदि ग्राम स्तर पे सारे पशुपालक मिल के इस तरह के आयोजन करते हैं कि वो या तो एक जगह पे अपने पशुधन को इकट्ठा कर लें और जो पशु स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सूचित करें कि हम इस दिन अपने सारे पशुधन को इकट्ठा करेंगे, तो वहां पे आप आके उनका स्वास्थ्य जांच कर लीजिए, उसके जो निदान हो सकते हैं वो कर दीजिए, और इसी के साथ में उस समय पे होने वाले टीकाकरण के लिए भी जो है हम हमारे पशुओं को इकट्ठा करेंगे, तो आप टीका भी लेके आइए। क्योंकि टीकाकरण भारत सरकार ने भी जो है अनिवार्य रूप से एक बड़े अभियान के रूप में लिया है, तो हमारे पशुपालकों को भी जो है इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: कुछ स्तरों पे हो सकता है कि हमें किसानों के लिए कार्यशालाएं करना हो, हम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इसमें मदद कर सकती हैं, इसी के साथ साथ में पशु स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो स्वयंसेवी संस्था उनके सहयोग से इसको मिलके कर सकते हैं, कार्यशालाओं का आयोजन जिसमें हमारे पशुधन के स्वास्थ्य प्रबंधन को लेके बात हो, बीमारियों की रोकथाम को लेके बात हो, उनके उचित खान पान और समय समय पे क्या दिया जाना चाहिए, उनके पोषण में क्या चीजें होना चाहिए, पशुशालाओं में स्वच्छता प्रबंधन किस तरह से हो, इसके लिए जो है एक समय में या अलग अलग समय में हम छोटे छोटे अंतराल पे छोटे समय के लिए थोड़े समय के लिए उनके उपलब्ध समय के अनुसार जो है उन कार्यशालाओं का आयोजन यदि लगातार करते हैं तो इससे किसानों को जो है ये पता रहेगा कि उनको कब किस तरह से क्या अपने पशुधन के स्वास्थ्य और हित में निर्णय लेना है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से गांव स्तर पर पशु स्वास्थ्य और टीकाकरण की आवश्यकता को हमें बढ़ावा देना चाहिए और क्या क्या गतिविधि करनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को हमें बताया है, तो हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके से अगर ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है तो मवेशियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उच्च टीकाकरण की दरें हैं वो बढ़ जाएंगी, इसी के साथ किसानों का ज्ञान भी बढ़ेगा और मजबूत पशु चिकित्सा सेवाएं भी पशुओं को मिल पाएंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ढेर सारे फायदे होंगे अगर गांव स्तर पर हम इन सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं और समय पर पशुधन के स्वास्थ्य और खान पान की चीजों को महत्व देते हैं। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ભાઈન બોનું જેમ કે હવે આપણે વેસમાં મનીષજી જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણા કાની વાતે બતાડી હે કે ગ્રામ સ્તર માતે હરતે આપણને ટીકાકરણને વધાવવું આલવું હોગા ને એન થકી હું હું ફાયદા થઈ શકે। તો આશા કરા હું કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા।

सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बच्चों में दिखावे की बढ़ती आदत और उसके असर को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश के बचपन वह समय होता है जब बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, अपने सपनों को आकार देते हैं और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन आज का दौर पहले जैसा नहीं रहा।
0: बिल्कुल,
1: अब बच्चों के बीच केवल पढ़ाई, खेल और अच्छे व्यवहार की चर्चा नहीं होती बल्कि कपड़े, मोबाइल, महंगे खिलौने, ब्रांडेड चीजें, सोशल मीडिया और दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ भी बढ़ती जा रही है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, धीरे धीरे यह होड़ बच्चों के स्वभाव का हिस्सा बनती जा रही है। आज कई बच्चे अपनी खुशी से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कशिश कि लोग उसे देखते हैं, किसके पास नया मोबाइल है, किसके जूते ज्यादा महंगे हैं, कौन सोशल मीडिया पर ज्यादा अच्छा दिख रहा है, किसकी पार्टी ज्यादा बड़ी हुई। ये बातें बच्चों के मन पर असर डाल रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: यह केवल एक आदत नहीं है श्रोता साथियों बल्कि धीरे धीरे मानसिक और सामाजिक समस्याओं का रूप लेती जा रही है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ गीत सुनवाए हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों में दिखावे की बढ़ती आदत और उसके क्या असर हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले बताया था कि कई बार माता पिता कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। अगर बात करें दिखावे के असर की, तो श्रोता साथियों, दिखावा केवल महंगे कपड़े पहनना या बड़ी चीजें खरीदना नहीं होता। दिखावा जो है वो मानसिकता है श्रोता साथियों, जिसमें इंसान दूसरों को प्रभावित करने वाली अपनी वास्तविक स्थिति से अलग छवि बनाने की कोशिश करता है।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, जब बच्चा यह सोचने लगे कि उसे लोगों के सामने हमेशा सबसे अच्छा ही दिखना है, तभी से दिखावे की शुरुआत हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: यह आदत श्रोता साथियों धीरे धीरे हमारे बच्चों को वास्तविक जीवन से दूर ले जाती है, और वो जो बच्चा है वो अपनी सच्ची खुशी के बजाय बाहरी प्रशंसा को ज्यादा महत्व देने लगता है।
1: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों बात आती है कि बच्चों में दिखावे की आदत क्यों बढ़ रही है। तो श्रोता साथियों, आज छोटे बच्चे भी मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।
0: जी,
1: वे रोज ऐसे वीडियो देखते हैं जहां महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, शानदार कमरे, चमक दमक दिखाई देती है। धीरे धीरे बच्चे ये मानने लगते हैं कि अच्छा जीवन वही है जिसमें ज्यादा दिखावा हो।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का केवल अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन बच्चे ये समझ नहीं पाते, वे तुलना करना शुरू कर देते हैं और खुद को कम महसूस करने लगते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी,
1: के साथ आजकल कशिश माता पिता की प्रतिस्पर्धा भी सामने आती है। कई बार बड़े लोग खुद अनजाने में बच्चों में दिखावे की आदत डाल देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब माता पिता दूसरों के सामने अपने बच्चों की चीजों, स्कूल, कपड़ों या उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, तब बच्चे भी यही सीखते हैं कि समाज में सम्मान पाने के लिए दिखावा जरूरी है।
0: जी जी,
1: बच्चों पर उनके दोस्तों का भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि श्रोता साथियों, अगर किसी समूह में महंगी चीजों का महत्व दिखाया जाता है तो बाकी बच्चे भी उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे केवल दोस्ती बनाए रखने के लिए अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करवाने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये भी हम देखते हैं कि बच्चों पर दोस्ती का दबाव होने के कारण भी ये सारी दिखावे की जो संस्कृति है वो बढ़ती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें तो हम देखते हैं कि विज्ञापन और बाजारवाद का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जैसे कि आज विज्ञापन बच्चों को सीधे प्रभावित कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: हर चीज को स्टाइल, फैशन और स्टेटस से जोड़कर दिखाया जाता है। ऐसे में बच्चों को ये लगता है दोस्तों कि अगर उनके पास नई चीजें नहीं होंगी तो वे पीछे रह जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि सादगी की शिक्षा भी कम हो रही है। जैसे कि पहले बच्चों को सादगी, संतोष और व्यवहार की शिक्षा ज्यादा दी जाती थी।
1: बिल्कुल,
0: अब धीरे धीरे ये बातें कम होती जा रही है अंजलि जी। और परिवारों में समय की कमी के कारण बच्चों को जीवन के मूल्य की सीख कम मिल पा रही है।
1: जी हाँ,
0: जिसके कारण हम देखते हैं कि बच्चे दिखावे की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये उनकी आदत बन चुकी है।
1: बिल्कुल, यही अब बात आती है कशिश के, दिखावे का बच्चों के मानसिक असर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्रोता साथियों, इससे बच्चों के आत्मविश्वास में कमी आती है। जो बच्चे दूसरों जैसी चीजें नहीं खरीद पाते, वे खुद को कमजोर समझने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनके मन में हीन भावना आने लगती है। वे सोचते हैं कि उनकी पहचान केवल चीजों से होती है। हर समय दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश बच्चों को मानसिक तनाव देती है। वे छोटी उम्र में ही कशिश चिंता और दबाव महसूस करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और कई बच्चे सोशल मीडिया पर लाइक और तारीफ के पीछे परेशान रहने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: दिखावे की आदत बच्चों को सच छिपाने की ओर ले जा सकती है। कुछ बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति या जीवन को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ताकि लोग उन्हें कम न समझे। जब बच्चा हर समय श्रोता साथियों दूसरों जैसे बनने की कोशिश करता है, तब वह अपनी असली पहचान भूलने लगता है। वह यह समझ नहीं पाता कि उनकी अपनी खूबियां क्या हैं। तो इस तरीके से हम ये जान पाए कशिश कि दिखावे का असर

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि बच्चों में दिखावे की आदत क्यों बढ़ रही है, और साथ ही हम ये जान पाए कि इसके क्या मानसिक नुकसान होते हैं।
1: बिल्कुल
0: ही बात करें सामाजिक असर की, तो कशिश दिखावा बच्चों में तुलना की आदत बढ़ाता है। वे दोस्ती को व्यवहार से नहीं बल्कि चीजों से आंकने लगते हैं।
1: जी जी
0: श्रोता साथियों, जब बच्चे केवल

0: स्टेटस और दिखावे को महत्व देने लगते हैं, तब रिश्तों की सच्चाई कम होने लगती है। दोस्ती स्वार्थ और प्रतियोगिता में बदल सकती है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ बच्चे महंगी चीजें पाने के लिए गलत रास्ते भी चुन सकते हैं और छोटी उम्र में चोरी, झूठ या जिद जैसी आदत भी पड़ जाती है।
1: जी हाँ अंजलि जी,
0: कहना चाहेंगे कशिश कि जो बच्चे साधारण परिवार से आते हैं वे खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं, इससे उनका आत्मबल कमजोर हो सकता है और कई बार वे पढ़ाई और प्रतिभा से ज्यादा बाहरी चीजों को महत्व देने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो कह सकते हैं कि इस तरीके से बच्चों में अगर दिखावे की संस्कृति बढ़ती है तो ये कुछ सामाजिक असर हैं वो हमें देखने को मिल पाते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, अब यही बात करते हैं कि क्या सादगी पुरानी चीज बन गई है। दोस्तों अगर ये प्रश्न हमारे सामने आया है तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सादगी कभी पुरानी नहीं होती। अंजलि जी असल में तो सादगी इंसान को मजबूत बनाती है। जो बच्चा अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना सीखता है वही आगे चलकर मानसिक रूप से मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, महान लोगों का जीवन अगर हम देखते हैं तो उनमें सादगी, मेहनत और व्यवहार जैसी चीजें हमें ज्यादा देखने को मिल रही है।
0: बिल्कुल।
1: और हम देखते हैं कि वही उनकी सबसे बड़ी पहचान भी रही है। समाज में सम्मान केवल महंगी चीजों से नहीं मिलता दोस्तों, बल्कि अच्छे संस्कार और व्यक्तित्व से भी मिलता है, ये हमें अपने बच्चों को बताना होगा।
0: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है कि बच्चों को दिखावे से हम कैसे बचाएं। तो श्रोता साथियों, उन्हें समझाएं कि इंसान की कीमत चीजों से नहीं होती, अच्छे व्यवहार, मेहनत और ईमानदारी से होती है।
1: बिल्कुल।
0: किसी दूसरे बच्चे से तुलना करना बच्चों के मन में असुरक्षा बढ़ाता है, इसलिए हमें बच्चों की परिस्थितियों को अलग अलग तरीके से समझना है और तुलना करने से बचना है।
1: जी हाँ,
0: बच्चे वही सीखते हैं कशिश जो वे घर में देखते हैं, इसलिए अगर बड़े भी सादगी अपनाएंगे तो बच्चा भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को यह भी समझना जरूरी है श्रोता साथियों कि सोशल मीडिया पूरी सच्चाई नहीं दिखाता, वहाँ केवल चमक दिखाई जाती है। उनकी कला, मेहनत, व्यवहार और अच्छे गुणों की तारीफ हमें करनी है, केवल बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। बच्चों को गांव, प्रकृति, समाज, सामाजिक गतिविधियों और सामूहिक खेलों से भी जुड़ना जरूरी है, इससे वे वास्तविक जीवन को समझ पाते हैं। श्रोता साथियों, स्कूलों को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन मूल्यों की शिक्षा भी देनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को सहयोग, सादगी, संवेदनशीलता और आत्मसम्मान की सीख देना जरूरी है। इसी के साथ समाज को भी कशिश बच्चों को उनकी आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना है, हर बच्चे को सम्मान और अवसर मिलना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि साथियों, बच्चों में बढ़ती दिखावे की आदत केवल फैशन का मामला नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: बल्कि ये उनके मानसिक विकास के साथ साथ आत्मविश्वास और सामाजिक सोच को भी प्रभावित करने वाला एक विषय है। अगर अंजलि जी समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे बाहरी चमक में उलझकर अपने असली गुणों और खुशियों से दूर हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में एक माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों को यही सिखाना होगा साथियों कि जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान महंगी चीजें नहीं बल्कि अच्छा चरित्र, सच्चाई, मेहनत और संवेदनशीलता होती है।
0: बिल्कुल।
1: जिस बच्चे के भीतर दोस्तों आत्मसम्मान और संतोष होगा वही जीवन में सच्ची सफलता और खुशी प्राप्त कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हम सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ साथियों हमारे बच्चे दिखावे की दौड़ में नहीं बल्कि अपने सपनों की प्रतिभा, अपने अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़े। और यही अंजलि जी एक स्वस्थ समाज और मजबूत भविष्य की सही दिशा होगी।
0: बिल्कुल। तो कशिश, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरीके से बच्चों के अंदर दिखावे की संस्कृति बढ़ रही है और उसका प्रभाव किस तरीके से उन पर पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी
0: विदा
1: हाँ।
0: जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन और हमारी बातें अब यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
2: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
5: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है कि कला में डूबे रहिए, ये हमारी बढ़ती उम्र की गति को भी घटाता है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, जैसे कि मनुष्य केवल शरीर से नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और रचनात्मकता से भी जीवित रहता है। जीवन की भागदौड़, तनाव, जिम्मेदारियां और बढ़ती उम्र अक्सर व्यक्ति को भीतर से थका देती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को फिर से जीवंत बना सकती है और वो है कला। कला केवल चित्र बनाना या गीत गाना नहीं है बल्कि आत्मा की वो भाषा है श्रोताओं, जो मनुष्य को भीतर से युवा बनाए रखती है।
0: जी जी,
1: चाहे संगीत हो, नृत्य हो, लेखन हो, चित्रकारी हो, अभिनय, कविता या हस्तकला, हर कला व्यक्ति के मन को शांति

0: जीवन को नई ऊर्जा देती है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत क्यों ना दोस्तों को पहले गीत के साथ करवाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि गाना सुनना भी एक कला है। तो श्रोता साथियों आइए यहाँ पर पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों शुरुआत में बहुत ही प्यारा सा गीत हमारा रहा और विषय भी आज का बड़ा ही रोचक है कि कला में डूबे हमें रहना है, ये हमारी उम्र बढ़ने की रफ्तार को घटाएगा। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था कि हमारा शरीर केवल शरीर नहीं है बल्कि ये भावनाओं, कल्पनाओं, अनुभवों और संवेदनाओं का एक संगम है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, जब जीवन केवल भागदौड़, प्रतियोगिता और तनाव तक सीमित हो जाता है तब इंसान भीतर से ही थकने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: उसकी चेहरे की चमक कम होने लगती है, मन बोझिल हो जाता है और उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। जागृति जी,
1: जी हाँ।
0: लेकिन इसी जीवन में एक ऐसी शक्ति भी है जो मन को जवान बनाकर रखती है, आत्मा को ताजगी देती है और जीवन में नई ऊर्जा लेकर आती है, और वो है कला। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कला में रुचि रखने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ, सकारात्मक और सक्रिय रहते हैं। कला व्यक्ति को तनाव से दूर रखती है और उसकी सोच को नया आकार देती है।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि कहा जाता है कि कला में डूबे रहिए, उम्र बढ़ेगी लेकिन मन बूढ़ा नहीं होगा।
0: जी जी
1: श्रोताओं, प्राचीन समय से ही कला मनुष्य के जीवन का हिस्सा रही है। गुफाओं की चित्रकारी से लेकर आधुनिक डिजिटल कला तक इंसान ने हमेशा अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से ही व्यक्त किया है। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: जब कोई व्यक्ति संगीत सुनता है, कविता लिखता है या रंगों से चित्र बनाता है तब उसका मन तनाव से दूर होकर शांति महसूस करता है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मन की चिकित्सा भी है। आज की तेज जिंदगी में लोग चिंता, अकेलेपन और तनाव का शिकार हो रहे हैं, ऐसे समय में कला मन को सहारा देती है और व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, और हम देखते हैं कि कला केवल चित्र बनाना या गीत गाना नहीं होता बल्कि कला तो वह माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अपने भीतर की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों कोई संगीत में डूब जाता है तो कोई कविता में, कोई नृत्य में तो कोई रंगों में, साथ ही कोई अभिनय और मिट्टी को आकार देने में भी। देखते हैं कि कला इंसान को भीतर से जीवित रखती है। इसी कारण से श्रोता साथियों, जो लोग कला से जुड़े रहते हैं वे उम्र बढ़ने के बावजूद भी भीतर से युवा बने रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आज के समय में हमारे युवा साथी सबसे अधिक मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। जागृति जी, पढ़ाई, सोशल मीडिया, करियर, अकेलापन और भविष्य की चिंता ने युवाओं के जीवन को तनावपूर्ण बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में कला केवल उनके लिए मनोरंजन नहीं होगी बल्कि मानसिक और भावनात्मक उपचार भी बन सकती है। अगर बात करें तो श्रोता साथियों, कई वैज्ञानिक शोध भी ये बताते हैं कि कला से जुड़ाव होने पर तनाव कम रहता है। कला मस्तिष्क को सक्रिय बनाकर रखती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देख सकते हैं कि कला कई रूपों में जीवन में उपस्थित होती है, जैसे कि कहानी सुनना, हस्तशिल्प, लेखन, रंगमंच, चित्रकला, नृत्य, संगीत। दोस्तों हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई कला जरूर छिपी हुई होती है।
1: जी हाँ,
0: बस जरूरत उसे पहचानने की है और समय देने की है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है लेकिन मानसिक रूप से बूढ़ा होना हमारी सोच पर निर्भर करता है। कई लोग कम उम्र में ही निराश, तनावग्रस्त और थके हुए दिखाई देते हैं श्रोताओं, वहीं कुछ लोग अधिक उम्र में भी उत्साह और ऊर्जा से भरे रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसका बड़ा कारण उनका जीवन जीने का तरीका होता है।
0: जी जी,
1: जब व्यक्ति केवल काम और जिम्मेदारियों में उलझ जाता है तब उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है, वो नई चीजें सीखना छोड़ देता है और जीवन में उत्साह कम होने लगता है।
0: जी हाँ जागृति जी,
1: श्रोताओं कला व्यक्ति के भीतर जिज्ञासा और आनंद को जीवित रखती है। कला से जुड़ा व्यक्ति हर दिन कुछ नया महसूस करता है और यही उसे मानसिक रूप से युवा बनाए रखता है। कहना चाहेंगे कशिश कि संगीत ऐसी कला है जो सीधे दिल को छूती है। मधुर संगीत सुनने से तनाव कम होता है। चित्रकारी और रचनात्मकता की बात करें तो चित्रकारी केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है।
0: बिल्कुल,
1: जब व्यक्ति रंगों के साथ समय बिताता है तब उसका मन शांति महसूस करता है। लेखन की बात करें, कविता की बात करें तो लेखन व्यक्ति के मन का दर्पण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करता है तब उसका मन बहुत हल्का महसूस होता है।
0: बिल्कुल,
1: डायरी लिखना, कविता रचना या कहानी लिखना मानसिक तनाव को कम करने का प्रभावी तरीका है।
0: जी हाँ,
1: इसी तरह नृत्य और शारीरिक ऊर्जा की बात करें श्रोता साथियों, तो नृत्य केवल कला नहीं बल्कि व्यायाम भी है। जब व्यक्ति नृत्य करता है तो उसका शरीर सक्रिय रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नृत्य तनाव को दूर करके शरीर में नई ऊर्जा भर देता है।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग नियमित रूप से नृत्य करते हैं वे अधिक आत्मविश्वासी और सक्रिय रहते हैं।
0: जी हाँ,
1: तो कहना चाहेंगे श्रोता साथियों आपसे कि आज के आधुनिक समाज में लोग भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने बातचीत को कम कर दिया है। ऐसे समय में कला व्यक्ति को अपने भीतर से जोड़ती है कशिश।
0: बिल्कुल,
1: और जब कोई व्यक्ति कविता लिखता है, चित्र बनाता है जैसा कि आपने कहा था, संगीत सुनता है तब वह खुद के साथ समय बिताता है, इससे मन शांत होता है और अकेलापन कम होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों से हमारी बातें कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छी चल रही है और विषय भी हमारा काफी जरूरी है श्रोता साथियों से बातचीत का।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में दोस्तों को करवा देते हैं।
1: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कला में डूबे रहने से हमारी बढ़ती उम्र की गति घटती है, तो जैसा कि गीत से पहले हमने आपको कला और मनुष्य के गहरे संबंध के बारे में बताया था, बढ़ती उम्र और मानसिक थकान के बारे में बताया था, संगीत चित्रकारी रचनात्मकता लेखन कविता के महत्व के बारे में भी हमने जाना था, यही जानते हैं कि बुजुर्गों के जीवन में कला का क्या महत्व होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि कशिश, कई बुजुर्ग लोग रिटायरमेंट के बाद अकेलापन और निराशा महसूस करते हैं, यदि वे संगीत चित्रकारी बागवानी लेखन या हस्तकला जैसी गतिविधियों से जुड़ जाए तो उनका जीवन फिर से उत्साह से भर सकता है। कला बुजुर्गों के मन को सक्रिय रखती है और उन्हें सकारात्मक सोच देती है, इससे याददाश्त भी श्रोताओं बेहतर रहती है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, अगर लोक कला और संस्कृति के महत्व को लेकर बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत कला और संस्कृति का देश है। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: हमारे लोकगीत, लोक नृत्य, कठपुतली कला, मिट्टी की कला और पारंपरिक चित्रकला हमारी पहचान है। जब युवा साथी इन कलाओं से जुड़ेंगे तब वे अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: इससे उनमें गर्व और आत्मीयता की भावना पैदा होगी। बस श्रोता साथियों, आज जरूरत है कि युवा केवल आधुनिक कला ही नहीं बल्कि अपनी लोक कलाओं को भी अपनाएं।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि आज के हमारे युवा साथी घंटों मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताते हैं, इससे उनकी आंखों पर भी असर पड़ रहा है, नींद खराब हो रही है, उनमें मानसिक तनाव बढ़ रहा है और रचनात्मकता की कमी देखी जा रही है। वहीं इसके विपरीत देखा जाए तो कला जो है वो इंसान को सृजन की ओर ले जाती है। जागृति,
0: बिल्कुल,
1: मोबाइल केवल जानकारी दे सकता है साथियों, लेकिन कला जीवन में अनुभव और संवेदना भरती है।
0: और हम एक कहानी के माध्यम से श्रोता साथियों आपको बता सकते हैं कि जैसे कि एक शहर में 65 वर्षीय रमेश जी रहते थे। नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद वे बहुत उदास रहने लगे थे। कशिश,
1: बिल्कुल,
0: उन्हें लगता था कि अब जीवन में कुछ नया नहीं बचा है। एक दिन उनकी बेटी उन्हें चित्रकारी की कक्षा में ले गई। शुरुआत में रमेश जी हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रंगों से दोस्ती कर ली। वे रोज नए चित्र बनाने लगे। कुछ महीनों बाद उनका स्वभाव बदल गया। अब वे पहले से अधिक खुश, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी दिखने लगे।
1: बिल्कुल।
0: लोग उनसे पूछते, आपकी उम्र बढ़ रही है फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? रमेश जी मुस्कुराकर कहते, मैंने उम्र गिनना छोड़ दिया है, अब मैं रंगों के साथ जीता हूँ। ये कहानी बताती है श्रोताओं कि कला केवल समय बिताने का साधन नहीं है बल्कि जीवन को फिर से जीने की प्रेरणा है।
1: बिल्कुल।
0: जो कला में खो जाता है वो जीवन को फिर से पा जाता है। आज के युवा पढ़ाई, प्रतियोगिता और करियर के दबाव में तनाव का सामना कर रहे हैं। कशिश, ऐसे समय में कला हमारे युवा साथियों के मन को संतुलित रखने में मदद करती है।
1: बिल्कुल।
0: संगीत, लेखन, अभिनय या चित्रकारी जैसी गतिविधियाँ युवाओं को मानसिक राहत देती है।
1: बिल्कुल।
0: हम कह सकते हैं कि कला युवाओं की रचनात्मक सोच को बढ़ाती है और उन्हें सकारात्मक दिशा भी देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। दोस्तों, कहा जा सकता है कि कला केवल शौक नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें तनाव से बचाती है, मन को हमारे प्रसन्न रखती है और उम्र बढ़ने की रफ्तार को भी धीमा करती है। जागृति जी, जैसा कि हमने हमारे साथियों को पहले भी बताया कि जो लोग कला में डूबे रहते हैं वे जीवन को केवल बिताते नहीं है बल्कि महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनके भीतर उत्साह रहता है, चीजों को सीखने की जिज्ञासा रहती है और संवेदनाएं भी जीवित रहती है। आज के हमारे युवा साथियों की आवश्यकता ये है कि वे तकनीक और व्यस्तता के बीच अपने जीवन में कला के लिए भी जगह बनाएं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि दोस्तों, कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक शांति और लंबे समय तक युवा बने रहने का माध्यम है। जीवन को केवल जिम्मेदारियों की किताब मत बनाइए साथियों, उसमें संगीत का एक पन्ना जोड़िए, रंगों की थोड़ी चमक भरिए और शब्दों की मिठास मिलाइए और साथ ही भावनाओं को बहने दीजिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जिस इंसान के जीवन में कला जीवित रहती है उसके भीतर की युवावस्था भी लंबे समय तक जीवित रहती है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि जीवन केवल काम, पैसा और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। यदि जीवन में कला नहीं होगी तो मन धीरे धीरे सूखने लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: कला व्यक्ति को भीतर से जीवित रखती है जैसा कि अभी आपने कहा था, और ये तनाव को कम करती है, मन को शांति देती है और जीवन में उत्साह भरती है। उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है श्रोताओं, लेकिन मन को युवा बनाए रखना हमारे हाथ में जरूर है। जो व्यक्ति कला से जुड़ा रहता है वो जीवन को और अधिक सुंदर, सकारात्मक और आनंदमय बना लेता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि हमें अपने जीवन में किसी न किसी कला को जरूर अपनाना होगा, चाहे थोड़ा समय ही क्यों न हो। कला के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि कला केवल

0: रोक नहीं बल्कि जीवन को खुशहाल बनाने का माध्यम है।
1: जी हाँ,
0: अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि उम्र शरीर की बढ़ती है लेकिन कला मन को हमेशा जवान रखती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: और देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनवाएं यहाँ पर।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हमारी आपसे बातें चल रही थी वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हमरो हमरो हमरो घणी बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
2: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्र अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
1: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्र।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, किताबों से सीख सकते हैं आर्थिक मजबूती, यानी कि श्रोता साथियों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। और ये समझ हमें सबसे अच्छी गुरु यानी कि किताबों से मिलती है अंजलि। किताबें केवल शब्दों का संग्रह नहीं होता बल्कि वे अनुभव का खजाना होता है। एक अच्छी किताब हमें उन गलतियों से बचा सकती है जो लोग वर्षों में सीखते हैं। आर्थिक मजबूती केवल ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती श्रोताओं, बल्कि सही सोच, सही योजना और सही निर्णय से आती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में इसी विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी। जानेंगे कि किस तरीके से किताबों के माध्यम से हम आर्थिक मजबूती की जो चीजें हैं वो सीख पाते हैं। बातें ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत के दस्तूर को निभाते हुए जागृति जी, हम श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि, गीत से पहले हमने विषय बताया था और कुछ बातें रही थी इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमने जाना था किताबों से सीख सकते हैं आर्थिक मजबूती को। तो श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आज दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने किताबों से सीखकर अपनी जिंदगी बदल दी। किसी ने बचत करना सीख लिया अंजलि, किसी ने निवेश करना सीख लिया, तो किसी ने छोटा व्यवसाय शुरू करके सफलता हासिल की।
1: बिल्कुल,
0: वित्तीय साक्षरता यानी पैसों को समझने की क्षमता व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। बजट बनाना, बचत करना और भविष्य की योजना बनाना आर्थिक मजबूती के मुख्य आधार माने जाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज के समय में हर व्यक्ति चाहते हैं कि उनका जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बने।
0: बिल्कुल,
1: हर परिवार चाहता है श्रोता साथियों कि उनके घर में आर्थिक तंगी न हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो, बीमारी आने पर परेशानी न हो और भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन जागृति जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि आर्थिक मजबूती केवल व्यापारियों, पढ़े लिखे शहरों के लोग और अधिक कमाने वाले लोगों के लिए ही संभव है।
0: बिल्कुल,
1: जबकि श्रोता साथियों, सच यह है कि आर्थिक मजबूती की शुरुआत ज्ञान से होती है और ज्ञान का सबसे सरल, सस्ता और भरोसेमंद माध्यम है किताबें।
0: जी हाँ,
1: किताबें केवल कहानी या मनोरंजन का साधन नहीं होती है श्रोता साथियों, बल्कि वे जीवन जीने की समझ देती है। किताबें हमें ये सिखाती हैं जागृति जी कि कम पैसे में भी समझदारी से कैसे जीवन चलाया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: बचत कैसे की जाए, मेहनत को सही दिशा में कैसे किया जाए और कर्ज से कैसे बचा जाए और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूती कैसे बनाई जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, आर्थिक मजबूती को लेकर हम बताएं हमारे श्रोता साथियों को, तो श्रोता साथियों, आर्थिक मजबूती का अर्थ केवल अमीर होना नहीं होता, जरूरत के समय पैसे की कमी न होना, कर्ज से बचना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, अपने सपनों को पूरा करना और सम्मान के साथ जीवन जीना।
1: बिल्कुल,
0: आज कई लोग अच्छी कमाई के बावजूद परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसों का सही प्रबंधन नहीं आता। वहीं कुछ लोग कम आय में भी खुश और सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उन्होंने आर्थिक अनुशासन सीखा होता है। किताबें हमें यही अनुशासन सिखाती है, फिर बताती है कि खर्च और जरूरत में क्या फर्क है। कहा गया अंजलि कि कमाई बड़ी नहीं, समझ बड़ी होती है।
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक सफलता सोच से ही पैदा होती है। इसलिए श्रोता साथी, आपसे यही कहना चाहेंगे कि कई प्रेरणादायी किताबें बताती है कि छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ी ताकत बनती है। अगर एक विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की आदत डाल ले तो आगे चलकर वही आदत उसे आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है।
1: बिल्कुल,
0: वित्तीय शिक्षा में बचत, बजट और खर्च नियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें अब कि किताबें क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों, किताबें इंसान की सोच बदलती है। जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसकी समझ बढ़ती है, वह केवल आज के बारे में नहीं बल्कि आने वाले समय के बारे में भी सोचने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: किताबें हमें सिखाती हैं समय का महत्व, कैसे हमें समझना है, मेहनत का सही उपयोग हमें कहाँ करना है, बचत की आदत, छोटे व्यवसाय के तरीके, आत्मनिर्भर बनने की सोच और गलत खर्च से बचना और जीवन में अनुशासन लाना।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, जो व्यक्ति पढ़ता है वह दूसरों की गलतियों और अनुभवों से भी सीख लेता है। उसे हर सीख खुद नुकसान उठाकर नहीं लेनी पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव में आज भी कई लोग किताबों को केवल स्कूल तक सीमित मानते हैं। बहुत से लोग पढ़ाई पूरी होने के बाद किताबों से दूरी बना लेते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अगर पढ़ने की संस्कृति बनी रहे तो आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यदि किसान जो है वो खेती से जुड़ी जानकारी पढ़े जागृति जी, महिलाएं अगर स्वरोजगार और बचत समूह की जानकारी पढ़े, युवा कौशल विकास की किताबें पढ़े और बच्चे प्रेरणा

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से आर्थिक मजबूती का मतलब क्या होता है और किताबें क्यों जरूरी होती है, यही बात करें कि किताबें हमें बचत करना कैसे सिखाती है। तो श्रोता साथियों, आर्थिक मजबूती की सबसे पहली सीढ़ी होती है बचत।
1: जी हाँ,
0: कई किताबों में छोटी छोटी बचत के महत्व को समझाया जाता है, जैसे कि रोज थोड़ा पैसा बचाना, जरूरत और इच्छा में अंतर समझना और दिखावे से बचना और भविष्य के लिए तैयारी करना।
1: जी हाँ,
0: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों को कि बहुत से परिवार केवल इसलिए

0: आर्थिक संकट में फंस जाते हैं क्योंकि वे बिना सोचे खर्च करते हैं। यदि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बचत का महत्व समझाया जाए तो परिवार मजबूत बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: किताबें हमें सिखाती हैं कि बचत केवल अमीर लोग नहीं बल्कि समझदार लोग करते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं होता, पैसे को सही जगह लगाना भी बहुत जरूरी होता है। कई वित्तीय किताबें हमें निवेश की बुनियादी जानकारी देती है, जैसे बैंक बचत, फिक्स डिपोजिट, ये सब। वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को सही आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, और जो व्यक्ति निवेश के महत्व को समझता है वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: किताबें हमें ये भी सिखाती है कि जल्दी अमीर बनने के लिए लालच से बचना चाहिए, मेहनत, धैर्य और समझदारी ही सफलता का सही रास्ता है। इसीलिए हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे अंजलि कि जब हम संघर्ष और सफलता की कहानियां पढ़ते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: गरीबी में पढ़कर आगे बढ़ने वाले लोगों की कहानियां हमें प्रेरित करती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मेहनत और ज्ञान से सफलता पाई जा सकती है।
0: जी हाँ,
1: कई प्रेरक कहानियां साबित करती है श्रोता साथियों की शिक्षा और सीखने की आदत जीवन बदल सकती है। एक गरीब परिवार का बच्चा भी अगर पढ़ने और सीखने की आदत बना ले तो वो आगे चलकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, आजकल कई लोग लालच में आकर गलत योजनाओं में पैसा लगा देते हैं। कोई जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाता है तो कोई नकली निवेश योजना लेकर आ जाता है। श्रोता साथियों, जानकारी की कमी के कारण लोग अपनी मेहनत की कमाई खो बैठते हैं। यदि व्यक्ति पढ़ने की आदत रखता है तो वह सवाल पूछता है, समझता है और सोच समझकर निर्णय लेता है। किताबें इंसान को जागरूक बनाती है और जागरूक व्यक्ति आसानी से धोखा नहीं खाता। महिला परिवार की रीढ़ होती है श्रोता साथियों, यदि महिलाएं आर्थिक रूप से समझदार बने तो पूरा परिवार सुरक्षित हो सकता है। किताबों के माध्यम से महिलाएं सीख सकती हैं कि घर का बजट कैसे बनाना है, बचत समूह चलाना, छोटा व्यवसाय शुरू करना, सरकारी योजना का लाभ लेना, बच्चों की शिक्षा और पोषण पर सही खर्च करना।
1: बिल्कुल,
0: आज कई महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी है। इस बदलाव के पीछे जानकारी और सीखने की इच्छा सबसे बड़ी ताकत होती है।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आज का युवा घंटों मोबाइल पर समय बिताता है, अगर उसी समय का थोड़ा हिस्सा भी अच्छी किताबों को दिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। सोशल मीडिया हमें कुछ समय का मनोरंजन दे सकती है लेकिन किताबें हमें जीवन भर का ज्ञान देती है।
0: बिल्कुल,
1: जो युवा किताबों से जुड़ता है वो निर्णय लेने में अधिक समझदार बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग आर्थिक जानकारी के अभाव में गलत फैसले ले लेते हैं। अगर गांव में पुस्तकालय और पढ़ने की संस्कृति बढ़े तो युवा रोजगार, व्यवसाय और बचत के नए रास्ते खुल सकते हैं। अंजलि,
0: बिल्कुल,
1: किताबें युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। वे बताती है कि नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं बल्कि कौशल और छोटे व्यवसाय भी आर्थिक मजबूती दे सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी।
0: जी जी,
1: राहुल अक्सर सोचता था कि गरीबी से कैसे बाहर निकला जाए। एक दिन उसके स्कूल के शिक्षक ने उसे एक किताब दी, पैसों का सही उपयोग। राहुल ने वो किताब पढ़ी, उसने सीखा कि कम पैसों में भी बचत की जा सकती है। उसने छोटी सी डायरी बनाई और अपने खर्च लिखने लगा। धीरे धीरे उसने बचत शुरू कर दी, फिर उसने गांव में किताबें और कॉपी बेचने का छोटा काम शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वही राहुल अपने गांव का सफल व्यवसायी बन गया।
0: जी जी,
1: लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो राहुल मुस्कुराकर कहता अंजलि कि मेरी जिंदगी बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत मेरी किताबें हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कह सकते हैं कि किताबों ने राह दिखाई, मेहनत ने मंजिल पाई।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि किताबें केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती है, वे अनुभव, ज्ञान और जीवन की दिशा देने वाली साथी होती है।
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक मजबूती पाने के लिए केवल अधिक कमाना जरूरी नहीं होता है श्रोता साथियों, बल्कि समझदारी से जीवन जीना जरूरी है। यह समझ किताबों से विकसित होती है। जब गांव का किसान जानकारी पढ़ेगा, महिलाएं आत्मनिर्भरता की सीख लेंगी, युवा रोजगार के नए रास्ते समझेंगे और बच्चे प्रेरणादायक जीवन मूल्यों को अपनाएंगे, तब सच्चे अर्थों में समाज मजबूत बनेगा।
1: जी हाँ,
0: आर्थिक मजबूती बैंक खाते में जमा पैसों से नहीं आती बल्कि जागरूक सोच, सही निर्णय और लगातार सीखते रहने की आदत से आती है। इसलिए जरूरत है श्रोता साथियों कि हम किताबों को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रखें, बल्कि जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो समाज पढ़ता है वही समाज आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: और जो व्यक्ति सीखता रहता है वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने लिए नए अवसर बना लेता है। यही सच्चे स्वराज की पहचान है कि जागरूक नागरिक आत्मनिर्भर परिवार और मजबूत समाज बना रहे।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आर्थिक मजबूती केवल धन कमाने से नहीं आती बल्कि सही ज्ञान से आती है, और ये ज्ञान किताबों के माध्यम से सबसे सरल और सशक्त रूप में मिलता है।
0: जी हाँ।
1: जो व्यक्ति पढ़ने की आदत डालता है वो जीवन भर सीखता रहता है। किताबें हमें धैर्य देती है, अनुशासन देती है, बचत करवाती है, निवेश और आत्मविश्वास सिखाती है। अगर हम सच में आत्मनिर्भर और मजबूत भारत बनाना चाहते हैं श्रोता साथियों, तो हमें पढ़ने की संस्कृति को अपनाना होगा। हर घर में किताबें हो, हर युवा सीखने के लिए तैयार हो, तभी सच्चे अर्थों में आर्थिक स्वराज आएगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि धन से पहले ज्ञान को कमाइए, किताबों से जीवन को सजाइए, और जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है।
0: जी हाँ।
1: ज्ञान ही आर्थिक मजबूती का सच्चा रास्ता है। तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि किताबों से दोस्ती कीजिए, क्योंकि यही दोस्ती हमारे भविष्य को मजबूत बना सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर हाजिर होते हैं तो बात करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर जो कि हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ होता है और हमारी अच्छी आदतों से भी जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज के इस कार्यक्रम में हम नए विषय को लेकर हाजिर हैं। आज का हमारा विषय है कि सेहतमंद खाना बार बार की बीमारियों और अस्पतालों के चक्कर से कैसे बचाता है। हम देखते हैं मनीषा कि ऐसा कहा जाता है कि अगर खानपान हमारा सही हो तो हमारा शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन वर्तमान में हमारी जीवन शैली काफी बिगड़ चुकी है। हम देखते हैं कि लोग घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना यानी कि जो जंक फूड होता है उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं, जिसके कारण आए दिन वे अस्पतालों के और डॉक्टर्स के चक्कर लगाते ही रहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि किस प्रकार से सेहतमंद खाना जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और बार बार होने वाली बीमारियों से हमें कैसे बचाता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं,
1: जी हाँ,
0: सेहतमंद खाना बार बार की बीमारियों और अस्पतालों के चक्कर से हमें कैसे बचाता है।
1: बिल्कुल
0: कोशिश, हम देखते हैं कि मनुष्य का शरीर प्रकृति की सबसे अनमोल देन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन की हर कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन यदि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो हमें सुख सुविधाएं भी बेकार लगती हैं। आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है बार बार बीमार पड़ जाना।
1: जी जी
0: श्रोता साथियों, छोटी सी उम्र में थकान, कमजोरी, मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप और पाचन संबंधी समस्या बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बिगड़ती खान पान की आदतें। कोशिश, हम देखते हैं कि आज लोग स्वाद और सुविधाओं के पीछे भागते हुए पोषण को भूलते जा रहे हैं। बाजार का तला भुना खाना, पैकेट वाली चीजें खाना, अधिक चीनी और तेल वाले पदार्थ धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर बना देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी ओर हम देखते हैं कि संतुलित और पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को ताकत देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और अस्पतालों के चक्कर से भी हमें बचाता है। इसीलिए श्रोता साथियों, कहा जाता है कि अच्छा भोजन ही सबसे बड़ी दवा है।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि आज के समय की जो जिंदगी है वो काफी तेज हो चुकी है।
0: जी बिल्कुल,
1: लोग काम के दबाव, भागदौड़, तनाव और समय की कमी के कारण अपने खानपान पर कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कई लोग तो हम देखते हैं कि सुबह का नाश्ता भी छोड़ देते हैं साथियों।
0: जी,
1: और उसकी जगह पर बाहर का तला भुना खाना खाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो लोग हैं ज्यादा मीठे पेय पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन भी करने लगे हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो भी हमें होने लगी है।
0: बिल्कुल।
1: कभी हम देखते हैं कि हमारा पेट खराब रहता है तो कभी हमारे सिर में दर्द रहता है, कभी श्रोता साथियों कमजोरी या थकान रहती है तो कभी हमें बुखार की समस्या हो जाती है।
0: जी
1: देखते हैं कि कई बार ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो कब बड़ी समस्या का रूप ले लेती है हमें पता ही नहीं चलता है दोस्तों, और फिर हमें अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
0: बिल्कुल कशिश,
1: यदि इसके विपरीत देखें कि हमारा भोजन संतुलित, ताजा और पौष्टिक होगा तो हम कई बीमारियों से खुद को बचाकर रख सकते हैं साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि स्वस्थ भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता बल्कि शरीर को ताकत देने वाली सबसे बड़ी दवा भी होती है मनीषा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि महंगा खाना ही पौष्टिक भोजन होता है, लेकिन दोस्तों ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है। स्वस्थ भोजन वह है जिसमें शरीर को जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हो, जैसे कि अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध और दही, सूखे मेवे और पर्याप्त पानी। साथियों, जब भोजन में ये सारी चीजें संतुलित मात्रा में शामिल होती है तब शरीर मजबूत बनता है और मनीषा रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारी मजबूत होती है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज करते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: काम का दबाव, समय की कमी और सुविधाओं के कारण लोग जल्दी बनने वाले भोजन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बच्चे घर के खाने से अधिक पिज्जा, बर्गर, नूडल्स पसंद करने लगे हैं। युवा वर्ग रात तक जागते हैं और अनियमित भोजन करते हैं। कई लोग हम देखते हैं कि सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और दिन भर चाय और फास्ट फूड पर निर्भर हो जाते हैं। श्रोता साथियों, इन आदतों का असर धीरे धीरे हमारे शरीर पर दिखाई देने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: शरीर हमारा कमजोर हो जाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कशिश वो भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: और साथ ही हम देखते हैं कि व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगता है, फिर अस्पतालों के वो चक्कर शुरू कर देता है। यदि समय रहते खान पान सुधारा जाए साथियों तो हम कई बीमारियों को शुरुआत में ही रोक सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो सेहतमंद खाना होता है वो हमें कई बीमारियों से बचाता है।
0: जी हाँ,
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे हमारे विषय की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है कि सेहतमंद खाना बार बार की बीमारियों और अस्पतालों के चक्करों से हमें बचाता है। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि स्वस्थ भोजन क्या होता है और ये हमारी सेहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। अगर यही बात करें मनीषा की शरीर को बीमारी से कैसे बचाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और ये ऊर्जा हमें श्रोता साथियों सही भोजन से मिलेगी। लेकिन दोस्तों केवल पेट भर लेना पर्याप्त नहीं होता, शरीर को विटामिन प्रोटीन्स और आयरन की भी जरूरत होती है। देखते हैं कि यदि सही भोजन होगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी,
1: बिल्कुल
0: संक्रमण जल्दी नहीं होगा, हमें थकान कम होगी मनीषा और शरीर भी

0: हमारा सक्रिय रहेगा। इसी के साथ ही मानसिक तनाव भी कम होगा दोस्तों, और हमें नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब शरीर अंदर से मजबूत होता है तब छोटी छोटी बीमारियां जल्दी असर नहीं करती है। और जैसा कि आपने गीत से पहले भी बताया था साथियों को कि आजकल खानपान हमारा इतना बिगड़ चुका है जिसका असर सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है, उनमें कई बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों जंक फूड का बढ़ता चलन भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। साथ ही समय पर भोजन न करना भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण हम आए दिन बीमारियों से घिरे रहते हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि बीमारियां केवल शरीर को ही नहीं बल्कि जेब को भी प्रभावित करती हैं।
0: बिल्कुल,
1: अस्पतालों का खर्च आज बहुत बढ़ चुका है। यदि व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है तो दवाइयों और इलाजों में हजारों रुपए खर्च कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: इसके विपरीत वो पौष्टिक भोजन अपेक्षाकृत सस्ता और लाभदायक होता है हमारे लिए। श्रोता साथियों, अच्छा भोजन भविष्य की बीमारियों और खर्च दोनों को बचा सकता है, इसलिए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा श्रोता साथियों कि सेहतमंद भोजन कई प्रकार का निवेश हमारे लिए करता है। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि आज लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। रेडियो, स्कूलों, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से पौष्टिक भोजन के महत्व को वे समझ सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सरकारों और समाज को मिलकर बच्चों और युवाओं को जंक फूड के नुकसानों को बताना चाहिए। परिवार में भी भोजन को लेकर सही आदतें विकसित करनी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जब समाज स्वस्थ भोजन को अपनाएगा तभी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव होगा।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, इसमें मोटा अनाज और पारंपरिक भोजन का भी महत्व अधिक है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश के कई हिस्सों में श्रोता साथियों, पहले बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी खूब उपयोग में लिया जाता था और इसका सेवन भी खूब किया जाता था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आज लोग इन पारंपरिक भोजन और मोटे अनाज को भूलते जा रहे हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए काफी पौष्टिक है।
1: जी,
0: हम देखते हैं कि अगर इनका सेवन हम करते हैं तो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। मधुमेह हमारा नियंत्रित रहता है साथियों, पाचन हमारा अच्छा बना रहता है और शरीर मजबूत बनता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि बाजरे की रोटी, छाछ और लहसुन की चटनी जैसे जो पारंपरिक भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है, तो हमें इनका सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही अगर बात करें तो हम देखते हैं कि पहले गाँव में लोग ताजा और प्राकृतिक भोजन खाते थे, लेकिन आज गाँव में भी बाजार का पैकेट वाला भोजन बढ़ता जा रहा है, जो कि श्रोता साथियों चिंता का विषय है। ऐसे में हमें अपनी पारंपरिक भोजन की संस्कृति को बचाना होगा और ढेर सारे प्रयास करने होंगे, जैसे कि लोगों को हमें पारंपरिक भोजन के प्रति जागरूक करना होगा, मोटे अनाज के सेवन को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि दोस्तों यदि शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति हर काम कर सकता है। लेकिन बार बार बीमार पड़ने वाला व्यक्ति न तो ठीक से काम कर पाता है और न ही जीवन का आनंद ले पाता है मनीषा, इसलिए श्रोता साथियों स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। आपसे कहना चाहूंगी कि बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका सही भोजन है। हम जो खाते हैं साथियों वही हमारे शरीर और जीवन को बनाता है, क्योंकि स्वाद के पीछे भागने के बजाय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की है दोस्तों कि हम फिर से अपने पारंपरिक और पौष्टिक भोजन की ओर लौटें। घर का साधारण भोजन, समय पर खाना, पर्याप्त पानी और साथ ही नियमित दिनचर्या हमें अस्पतालों के चक्कर से बचा सकती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सेहतमंद भोजन केवल शरीर की जरूरत ही नहीं बल्कि अच्छे जीवन की भी आधारशिला है।
0: बिल्कुल,
1: सही खान पान व्यक्ति को मजबूत बनाता है, रोगों से बचाता है और अस्पतालों के चक्कर को भी कम करता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि लोग स्वाद से अधिक स्वास्थ्य को महत्व दें। यदि हम अपने भोजन में पौष्टिक चीजें शामिल करें और समय समय पर भोजन करें और जंक फूड को दूर करें, तो श्रोता साथियों हमारा जीवन में वो अधिक स्वस्थ रहेगा और खुशहाल बन सकता है। इस तरह से कशिश हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है।
0: बिल्कुल।
1: और इस संपत्ति की रक्षा करना सबसे सरल उपाय है संतुलित और सेहतमंद भोजन। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अच्छा भोजन केवल पेट ही नहीं भरता बल्कि जीवन को सुरक्षित और सुंदर बनाता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी,
0: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
1: बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: क्या करूं। दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मारू नाम गिल्ली है ने मू मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही हती। तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है। तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा, मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नु दूध ज पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लगी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे एक नए प्रेरणादायक विषय को लेकर बातचीत करते हैं, जो हमारे जीवन में हमारे भविष्य के साथ साथ हमारे सपनों को भी उड़ान देता है। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे अच्छे चरित्र की ताकत को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रोता साथियों, कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी पूंजी अगर मानी जाती है तो वो है उसका चरित्र। कहा जाता है कि जिसका चरित्र सही है वह व्यक्ति हर क्षेत्र में सम्मान पाता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों, इसी विषय को लेकर मेरी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम में गीत संगीत का भी दस्तूर बना रहता है हमारा, तो आइए पहले मनोरंजन कर लेते हैं इस गीत के साथ में, फिर हमारी बातचीत की हम फिर से शुरुआत करेंगे।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए मैं बढ़ना चाहूंगी कार्यक्रम में विषय की ओर। जैसा कि सपनों की उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से आज का हमारा विषय है अच्छे चरित्र की ताकत को लेकर। दोस्तों, गीत से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के जीवन में यदि कोई सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है तो वह है उसका चरित्र। साथियों, धन, पद, प्रतिष्ठा और शक्ति साथ ही ज्ञान तो तभी सम्मान दिलाते हैं जब चरित्र अच्छा होता है। अच्छे चरित्र वाला इंसान जो होता है दोस्तों, वह हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहना जानता है। उसे पता होता है कि उसे सफलता कैसे मिलेगी। साथ ही उसके व्यवहार को लेकर अगर बताऊं आपको तो व्यवहार भी दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण रहता है। उसके विचार सकारात्मक होते हैं, साथ ही कार्य भी दोस्तों समाज के लिए हमेशा प्रेरणा ही बनते हैं। हम देख सकते हैं कि इसी कारण से कहा जाता है कि चरित्र ही मनुष्य की असली पहचान है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के समय में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, प्रतियोगिता बढ़ रही है, लोग सफलता पाने के लिए अनेक रास्ते अपनाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोग आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनका चरित्र कैसा है? आपको बताना चाहूंगी कि जो सफलता अच्छे चरित्र के बिना मिलती है वह अधिक समय तक टिक नहीं पाती। वहीं श्रोता साथियों, ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत से प्राप्त सफलता जीवन को सच्चा सम्मान देती है। हम देख सकते हैं साथियों कि चरित्र मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ विचार, आदतों और मूल्यों का भी वह रूप होता है जो उसके व्यक्तित्व को पहचान देता है। किसी व्यक्ति का चरित्र इस बात से नहीं पहचाना जाता साथियों कि वह लोगों के सामने कैसा दिखता है, बल्कि इस बात से पहचाना जाता है कि वह अकेले में कैसा व्यवहार करता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है साथियों, दूसरों की सहायता करता है, अनुशासन में रहता है और गलत कामों से बिल्कुल दूर रहता है, साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी अगर अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता तो उसे अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। हम देखते हैं कि चरित्र कभी एक दिन में नहीं बनता। यह छोटी छोटी आदतों, नए नए संस्कारों, अनुभवों और जीवन के संघर्षों से ही धीरे धीरे विकसित होता है। साथियों, जिस प्रकार से एक पौधा समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म भी मिलकर एक मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि अच्छे चरित्र की सबसे बड़ी ताकत विश्वास से शुरू होती है, क्योंकि दोस्तों अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति पर लोग आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। क्योंकि विश्वास, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह शक्ति है जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है। साथियों, वो परिवार हो, मित्रता हो या कार्यस्थल का क्षेत्र हो, हर जगह विश्वास की जरूरत होती ही है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है उसकी बातों में सच्चाई भी देखी जाएगी, लोग उसकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को समाज में सम्मान भी मिलता है। साथियों, यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि धन अगर खो जाए तो वापस जरूर कमाया जाता है, स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाए तो उसका इलाज जरूर करवाया जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र खराब हो जाए साथियों तो विश्वास भी टूट जाएगा और उसे दोबारा बनाना हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। तो जैसा कि मैं कार्यक्रम के माध्यम से बात आपसे कर ही रही हूँ कि किस प्रकार से हम अपने चरित्र को बेहतर बना सकते हैं और चरित्र की ताकत क्या होती है, तो आगे भी ये बातें जरूर होंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि आपको एक और गीत सुनाया जाए। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें अच्छे चरित्र को लेकर चल रही हैं और गीत से पहले हम जान पाए थे कि अच्छे चरित्र की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है। अब अगर बात करूं दोस्तों कि सपनों को सच करने में अच्छे चरित्र की क्या भूमिका मानी जाती है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जो युवा हैं वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम डॉक्टर बनने की चाह रखते हैं, कोई शिक्षक बनना चाहता है, तो कोई कलाकार, वैज्ञानिक या फिर अधिकारी। लेकिन दोस्तों केवल सपना देखना काफी नहीं होता, सपनों को सच करने के लिए धैर्य भी होना चाहिए और धैर्य के साथ साथ अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ये जो गुण होते हैं वही अच्छे चरित्र की पहचान माने जाते हैं। अगर आपको बताऊं तो एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं साथियों कि जो विद्यार्थी मेहनत और सच्चाई से पढ़ाई करता है वह जीवन में आगे ही बढ़ेगा, और वहीं जो युवा गलत रास्तों से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसकी सफलता अस्थायी होगी। दोस्तों अच्छा चरित्र व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती है ना, तब चरित्र ही इंसान को टूटने नहीं देता। हम कह सकते हैं कि अच्छा चरित्र आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होगा तो उसे किसी भी बात का डर नहीं रहेगा और वह खुलकर अपने जीवन को जी पाएगा। और वहीं इसके विपरीत अगर देखें तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा डर में ही रहेगा कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। वहीं सच्चे और स्पष्ट विचार वाला व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रूप से मजबूत होता है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दिखावे से कभी नहीं आएगा, बल्कि हमारे भीतर की सच्चाई और अच्छाई से ही आता है। दोस्तों अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति असफलताओं से कभी घबराता नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है, और हम देखते हैं कि वो एक न एक दिन सफलता तो जरूर पा ही लेता है। अगर समाज में अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति की पहचान को हम जाने दोस्तों, तो देखा जाता है कि एक अच्छे समाज का निर्माण अच्छे चरित्र वाले लोग ही कर सकते हैं। यदि नागरिक ईमानदार है, जिम्मेदार है और संवेदनशील भी है, तो समाज में शांति और विकास बना रहेगा। हम देखते हैं साथियों कि आज समाज में कई समस्याएं हैं, जैसे कि धोखाधड़ी, असहिष्णुता, हिंसा। इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं चरित्र की कमजोरी ही है। यदि लोग अपने नैतिक मूल्यों को मजबूत करें साथियों, तो समाज की कई परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि दूसरों के सुख दुख को भी समझेगा। हम कह सकते हैं दोस्तों कि वह समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भाव फैलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हम जान ही रहे हैं कि अगर हमारे अंदर अच्छे चरित्र वाले गुण हैं, तो हम समाज में सम्मान लायक हैं और लोग हम पर विश्वास भी करेंगे। कह सकते हैं कि अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति में ढेर सारे गुण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईमानदारी का गुण, अनुशासन का गुण, विनम्रता का गुण, जिम्मेदारी और धैर्य का गुण। दोस्तों जब हमारे अंदर ये सारे गुण होते हैं तो हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ पाते हैं, समय और नियमों का सम्मान हम कर पाते हैं और सफल होने पर कभी हमें घमंड भी नहीं रहता। साथ ही दूसरों की मदद करने के लिए भी हम अक्सर तैयार रहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि अच्छे चरित्र की पहचान इन गुणों से ही की जा सकती है। अब अगर यही बात करूँ महान व्यक्तियों की, तो जैसा कि इतिहास में अनेक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो अपने चरित्र के बल पर श्रोता साथियों अपनी दुनिया में पहचान बना पाए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी की अगर बात करूं तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी थी। उनका चरित्र इतना मजबूत था साथियों कि लाखों लोग उन पर विश्वास करते थे। वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी सादगी, ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते हैं, और इन सभी गुणों से उन्होंने युवाओं को एक नई दिशा भी दी थी। साथियों वे कहते थे कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि युवाओं को हमेशा अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। उनका मानना था साथियों कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि मजबूत चरित्र बनाना भी होता है। तो इस तरीके से इन महान व्यक्तियों की सफलता का सबसे बड़ा आधार श्रोता साथियों उनका चरित्र ही था। हम कह सकते हैं कि अच्छे चरित्र का निर्माण सबसे पहले परिवार से ही शुरू होता है। अगर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और उनके जीवन की दिशा खुद तय करते हैं, तो कह सकते हैं कि बच्चे आगे जाकर समाज निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। यदि श्रोता साथियों घर में सम्मान, प्रेम, अनुशासन और सच्चाई का वातावरण होगा, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। हम कह सकते हैं साथियों कि अच्छे चरित्र का सबसे बड़ा पुरस्कार मन की शांति होती है। ऐसा व्यक्ति
जो रात को चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई अपराध बोध नहीं होता। समाज में सम्मान, रिश्तों में विश्वास और जीवन में संतोष। साथियों, ये जो तीनों चीजें हैं, यही चरित्र की असली देन है। भले ही अच्छे रास्ते पर चलना कभी कभी आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है दोस्तों, जो सच्चाई और नैतिकता का साथ नहीं छोड़ते। याद रखें, अच्छा चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह व्यक्ति को केवल सफल नहीं बनाता दोस्तों, बल्कि उसे सम्मानित और प्रेरणादायक भी बनाता है। सपनों की उड़ान तभी ऊंची होती है जब उसके पंख ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से बने हो। आज आवश्यकता इस बात की है दोस्तों कि हम केवल बाहरी सफलता के पीछे न भागें, बल्कि अपने भीतर के चरित्र को भी मजबूत करें, क्योंकि सुंदर व्यक्तित्व से लोग प्रभावित जरूर होते हैं, लेकिन अच्छे चरित्र से लोग हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। साथियों, तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी मेरी आपसे पूरी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी साथियों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अभी ही समाप्त होता है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि चरित्र वह प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है। जिसके पास अच्छा चरित्र है वही सच्चे अर्थों में सबसे शक्तिशाली इंसान है। इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा दोस्तों, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, बागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
4: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
5: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
4: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
5: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
4: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बस।
1: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
2: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
3: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
1: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को एक नए विषय के साथ में। जैसे कि रोजाना हमारी आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग विषय पर बातचीत होती है,
0: बिल्कुल,
2: तो आज भी एक नया विषय जुड़ रहा है। आज का विषय है आपसे बातचीत का कि वास्तविक और स्थायी बदलाव कैसे ला सकते हैं। यानी कि अंजलि और मनीषा, हम देखते हैं कि आज का समय तेज बदलावों का समय है और हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलना चाह रहा है। कोई अपनी आदतें बदलना चाह रहा है, कोई अपने व्यवहार को, कोई आर्थिक स्थिति को सुधारना चाह रहा है, तो कोई समाज में परिवर्तन लाने के सपने देखता है। लेकिन श्रोताओं, अक्सर देखा जाता है कि बदलाव कुछ समय के लिए ही आता है, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतें और पुराना जीवन वापस लौट आता है। और यही कारण है कि केवल बदलाव लाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बदलाव को वास्तविक और स्थायी बनाना सबसे जरूरी हो जाता है।
3: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मनोरंजन करते हैं हम कार्यक्रम के पहले गीत के साथ में।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक और स्थायी बदलाव कैसे लाएं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी और जागृति जी, हम देखते हैं कि मानव जीवन परिवर्तन का ही दूसरा नाम है।
1: बिल्कुल
0: समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, समाज बदलता है और सोच बदलती है और व्यक्ति भी बदलता रहता है, लेकिन हर बदलाव वास्तविक और स्थायी नहीं होता। साथियों, कई बार हम उत्साह में आकर बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं पर कुछ दिनों बाद पुराने तरीके से जीवन जीने लगते हैं। नए साल पर लक्ष्य बनाना, श्रोता साथियों, सुबह जल्दी उठने का निश्चय करना, मोबाइल कम चलाने का निर्णय लेना या अपने व्यवहार को बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये सब शुरुआत में अच्छा लगता है परंतु अधिकतर लोग इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते। जागृति जी, इसका कारण यह होता है कि बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। आज का समय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि तेजी से बदलता हुआ समय है। हर व्यक्ति अपने जीवन, परिवार, समाज और देश में सुधार देखना चाहता है।
0: जी हाँ,
1: कोई चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, कोई चाहता है कि गाँव विकसित हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, और हम देखते हैं कि बहुत से लोग चाहते हैं कि बच्चे उनकी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, समाज में प्रेम और भाईचारा बना रहे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बदलाव कुछ समय के लिए आता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसका कारण यह है, श्रोता साथियों, कि हम केवल ऊपर से बदलाव करते हैं, भीतर से नहीं।
2: बिल्कुल, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं वास्तविक बदलाव और स्थायी बदलाव को लेकर, तो वास्तविक बदलाव वो होता है, श्रोता साथियों, जो केवल दिखावे तक सीमित न हो बल्कि व्यक्ति की सोच, व्यवहार और जीवन शैली में गहराई से उतर जाए। स्थायी बदलाव वो होता है जो समय, परिस्थिति और कठिनाइयों के बावजूद बना रहता है। कहा भी गया है कि सच्चा बदलाव वही है जो समय के साथ और मजबूत बन जाए। श्रोताओं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्थायी बदलाव के बारे में और वास्तविक बदलाव के बारे में, तो हर बड़ा परिवर्तन अंजलि और मनीषा स्वयं से शुरू होता है। यदि हम समाज, परिवार या देश को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा। कई लोग दुनिया बदलने की बात तो करते हैं लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। श्रोताओं, वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का साहस रखे। यदि कोई व्यक्ति समय की कदर नहीं करता है तो मेहनत से बचता है, दूसरों का सम्मान नहीं करता, तो वो केवल भाषण देकर बदलाव नहीं ला सकता। बदलाव केवल सबसे पहले स्वयं को अनुशासित बनाना जरूरी है। कहा भी गया है कि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि वास्तविक बदलाव वह होता है जो व्यक्ति की सोच, आदतों, जीवन शैली को गहराई दे। स्थायी बदलाव वह होता है साथियों जो समय के साथ कमजोर न पड़े बल्कि व्यक्ति के जीवन का स्वभाव बन जाए। ऐसा परिवर्तन अचानक नहीं आता है साथियों बल्कि निरंतर प्रयास, धैर्य, आत्मविश्वास से संभव होता है। आज के समय में जागृति जी और अंजलि जी, हम देखते हैं कि समय हर व्यक्ति के पास उतना ही होता है।
1: बिल्कुल,
0: सफलता, शांति और संतुलन व्यक्ति चाहता तो है लेकिन वह संभव प्रयास नहीं करना चाहता। जब वह स्वयं की दिशा सही नहीं बदल सकता तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि आज जरूरत इस बात की है कि हम केवल शिकायत न करें बल्कि अपने भीतर से शुरुआत करें। यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, जिम्मेदारी और सोच में सुधार लाए तो पूरा समाज बदल सकता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग बदलाव को केवल बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे कि नया घर, नई सड़क, नई तकनीक और नई योजना। लेकिन श्रोता साथियों, असली बदलाव वहां होता है जो इंसान की सोच, व्यवहार और जीवन जीने के तरीके को बेहतर बनाए। यदि गांव में सड़क बन जाए लेकिन लोग सफाई नहीं करें, यदि बच्चों को स्कूल तो भेज दिया जाए लेकिन शिक्षा का महत्व वे न समझे, यदि महिलाओं को अधिकार मिल जाए लेकिन सम्मान न मिले, तो ये बदलाव अधूरा रह जाता है।
2: जी हाँ अंजलि, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव एक ही दिन में आ जाएगा लेकिन वास्तविकता ये नहीं है श्रोता साथियों कि हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। जैसे कि रोज समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, बड़ों का सम्मान करना, समय का सही उपयोग करना। श्रोता साथियों, ये सारी बातें जो है वो धीरे धीरे जीवन को बदल देती है। एक विद्यार्थी यदि प्रतिदिन केवल 2 घंटे मन लगाकर पढ़ाई भी करेगा तो कुछ महीनों बाद उसका आत्मविश्वास और ज्ञान दोनों बढ़ जाते हैं। उसी तरह मनीषा, यदि कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा बचत करना शुरू करे तो भविष्य में आर्थिक रूप से वो मजबूत बन सकता है। यानी कि श्रोता साथियों, कहना यही चाहेंगे कि छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव की नींव होती है।
1: बिल्कुल,
2: और जब तक सोच नहीं बदलती तब तक जीवन नहीं बदलता। नकारात्मक सोच व्यक्ति को कमजोर बना देती है श्रोता साथियों। जो व्यक्ति हमेशा डर, निराशा और बहानों में जीता है वो कभी स्थायी बदलाव नहीं ला सकता। इसके विपरीत सकारात्मक सोच व्यक्ति को आगे

0: नई सोच, नई तकनीकी और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि बदलाव हमें बेहतर इंसान बनाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन को नई दिशा देता है। यदि श्रोता साथियों कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है तो वह अपने व्यवहार में शांति लाने का प्रयास करता है तो यही एक सकारात्मक बदलाव होता है। यदि कोई विद्यार्थी समय का सही उपयोग करना सीख लेता है तो यह उसके भविष्य को उज्जवल बना देता है। इसलिए श्रोता साथियों, बदलाव केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि अच्छे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि वास्तविक और स्थायी बदलाव हम कैसे ला सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों के साथ यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: बिल्कुल,
2: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि किस तरीके से बदलाव का सही अर्थ क्या होता है और हम बदलाव कैसे ला सकते हैं। श्रोता साथियों, अक्सर लोग कहते हैं कि समाज खराब है, व्यवस्था ठीक नहीं है, लोग बदलना नहीं चाहते, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम खुद बदलने को तैयार हैं? श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि यदि हम चाहते हैं कि समाज में ईमानदारी बढ़े तो पहले हमें स्वयं ईमानदार बनना होगा। यदि हम चाहते हैं कि लोग समय की कीमत समझे तो पहले हमें समय का सम्मान करना होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत स्वयं करें। यह बात आज भी उतनी ही सच है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज की पीढ़ी तुरंत परिणाम चाहती है। लोग चाहते हैं कि मेहनत आज करें और सफलता कल मिल जाए, लेकिन श्रोताओ स्थायी बदलाव के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। पेड़ को बड़ा बनने में समय लगता है और उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आने में भी समय लगता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक श्रोताओ मेहनत करके हार मान ले तो वो कभी वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बदलाव को स्थायी बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना बहुत जरूरी है। मनीषा, हम देखते हैं कि धीरे धीरे चलने वाला ही दूर तक पहुंचता है। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये सोच और समाज को बदलने की शक्ति भी है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षित व्यक्ति सही और गलत का अंतर समझ जाता है, वो अंधविश्वास, भेदभाव और गलत परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाता है। और यदि समाज में वास्तविक बदलाव लाना है तो शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही समाज का भविष्य है।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी है। अधिकतर लोग एक साथ बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। स्थायी बदलाव के लिए श्रोता साथियों छोटे छोटे कदम है वो अधिक प्रभावी होते हैं।
0: बिल्कुल,
2: यदि कोई व्यक्ति रोज देर तक पढ़ता है और अचानक सुबह 4 बजे उठकर लक्ष्य बना लेता है तो यह संभव नहीं होता है कि वह कुछ दिनों के बाद वो होता है वो हार मान लेता है। श्रोता साथियों, लेकिन यदि वह रोज केवल 15 मिनट पढ़ने के लिए शुरुआत करे तो वह धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि छोटे कदम व्यक्ति को आत्मविश्वास देते हैं। जब वह छोटी सफलता प्राप्त करता है तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलाव का कारण बनती है।
0: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि किसी भी स्थायी बदलाव की नींव सोच से होती है। जब तक सोच नहीं बदलती श्रोता साथियों, तब तक योजनाएं और नियम भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। अगर उदाहरण के तौर पर जाने, यदि लोग बेटी को बोझ मानेंगे तो कानून भी बेटियों को पूरी सुरक्षा नहीं दे पाएगा। यदि लोग सफाई को केवल सरकारी जिम्मेदारी मानेंगे तो गांव शहर कभी साफ नहीं रहेंगे। यदि लोग शिक्षा को केवल नौकरी का साधन समझेंगे तो ज्ञान का असली महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मानसिकता बदलना जरूरी है। सकारात्मक सोच के लिए हमें अच्छी किताबों को पढ़ना होगा, प्रेरणादायक लोगों से सीख लेनी होगी, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी और हर समस्या में समाधान खोजना होगा और असफलता से सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम असफलता से सीख नहीं लेंगे तब तक हम हमारे जीवन को सही तरीके से नहीं जी पाएंगे।
1: जी हाँ, क्योंकि इसलिए जीवन में ऐसे लोगों का साथ चुनना बहुत जरूरी है जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें।
0: बिल्कुल,
1: अच्छे मित्र, अच्छे शिक्षक, अच्छे विचार व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। समाज में बदलाव केवल सरकार या नेताओं के भरोसे नहीं लाया जा सकता श्रोताओ, हर नागरिक की जिम्मेदारी है अंजलि और मनीषा कि वो अपने अपने कर्तव्य को समझे। यदि लोग ईमानदारी से अपने काम करेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और कानून का पालन करेंगे तो समाज अपने आप बेहतर बनने लगेगा। उदाहरण के लिए हम बात करें तो यदि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, पानी बचाए और प्लास्टिक का कम उपयोग करे तो पर्यावरण की स्थिति काफी सुधर सकती है। उसी तरह यदि हर व्यक्ति बेटियों का सम्मान करे और शिक्षा को बढ़ावा दे तो समाज में समानता जरूर बढ़ती है।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा जीवन है वो हमारी आदतों से बनता है। अच्छी आदतें जीवन को सफल बनाती है और बुरी आदतें हमें कमजोर कर देती हैं।
0: बिल्कुल,
2: इसीलिए श्रोता साथियों यदि स्थायी बदलाव चाहिए तो हमें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छी आदतें धीरे धीरे विकसित होती हैं, जैसे कि समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, व्यायाम करना, दूसरों का सम्मान करना और अनुशासन में रहना। श्रोता साथियों ये आदतें हैं वो हमें धीरे धीरे अपनानी पड़ती हैं। अगर हम एक साथ करने जाएंगे तो ये हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। श्रोता साथियों बुरी आदतों को छोड़ने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति मोबाइल की लत से परेशान है तो उसे धीरे धीरे अपने उपयोग को नियंत्रित करना होगा। अचानक सब कुछ छोड़ देना भी आसान नहीं होता है, लेकिन निरंतर प्रयास से हम सब कुछ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि परिवार समाज की पहली पाठशाला है। बच्चा जो घर में देखता है वही सीखता है। होता है। यदि घर में सम्मान, प्रेम, अनुशासन होगा तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। लेकिन यदि घर में झगड़े, अपमान और भेदभाव होगा तो उसका असर बच्चे के मन पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा बच्चों से संवाद करते रहना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना है और मिलकर निर्णय लेना है। गुस्से की जगह समझदारी अपनानी है। जब परिवार मजबूत बनते हैं तब समाज भी मजबूत बनता है।
2: जी हाँ,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि जीवन को समझने की कला है। एक शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क समझ सकता है। जब शिक्षा होती है वहाँ जागरूकता बढ़ती है और अंधविश्वास कम होता है और लोग अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को भली भांति समझ पाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि श्रोताओं, एक गांव में एक रवि नाम का युवक रहता था। वो हमेशा शिकायतें करता रहता था कि गांव में गंदगी है, लोग जागरूक नहीं है और कोई बदलाव नहीं ला सकता। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे कहा कि यदि तुम सच में बदलाव चाहते हो तो शुरुआत खुद से करो।
0: बिल्कुल,
1: अगले दिन रवि ने अपने घर और आसपास की सफाई शुरू कर दी। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। कुछ महीनों बाद पता चला कि पूरा गांव साफ और जागरूक दिखाई देने लगा। तो रवि ने समझ लिया कि बदलाव भाषण देने से नहीं बल्कि खुद उदाहरण बनने से आता है। तो हम कहना चाहेंगे मनीषा और अंजलि हमारे श्रोता साथियों से कि जो खुद बदलता है वही दुनिया बदलने की ताकत भी रखता है।
2: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्थायी बदलाव का सबसे बड़ा आधार होता है अनुशासन। केवल प्रेरणा के भरोसे जीवन नहीं बदलता श्रोता साथियों। प्रेरणा कुछ समय के लिए उत्साह देती है लेकिन अनुशासन व्यक्ति को लगातार आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करता है साथियों, वह अंत में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। निरंतरता किसी भी परिवर्तन को स्थायी बनाती है। यदि कोई विद्यार्थी केवल परीक्षा के समय पढ़ाई करे तो वह लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह रोज नियमित अध्ययन करे जागृति जी और अंजलि जी, तो वह ज्ञान को बढ़ाएगा और साथ ही उसके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा।
0: बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज का विकास महिलाओं के बिना संभव नहीं है। यदि महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक हो तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि महिलाएं केवल घर संभालने वाली नहीं बल्कि समाज निर्माण की बड़ी शक्ति है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा के अवसर उन्हें देने होंगे, आत्मरक्षा प्रशिक्षण उन्हें देना होगा, आर्थिक निर्भरता, निर्णयों में भागीदारी और सम्मान और सुरक्षा हमें देनी होगी। जब महिलाएं मजबूत बनती हैं तब समाज में स्थायी सुधार दिखाई देता है। कोई भी योजना हम देखते हैं कि तभी सफल होती है जब जनता उसमें भाग ले। केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती, यदि गांव के लोग मिलकर काम करें तो कई समस्याएं आसान हो सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है वास्तविक और स्थायी बदलाव को लेकर, तो ये बातें श्रोता साथियों ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,
2: तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी वास्तविक और स्थायी बदलाव को लेकर, तो यही हम वास्तविक और स्थायी बदलाव को कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे मेहनत, अनुशासन, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से ही आता है। हम देखते हैं अंजलि और मनीषा की बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से करनी होती है। छोटी अच्छी आदतें, सही सोच, शिक्षा, धैर्य और अच्छे कार्य मिलकर जीवन और समाज दोनों को बेहतर बनाते हैं। हमें ये याद रखना होगा श्रोता साथियों कि बदलाव एक दिन का काम नहीं है बल्कि जीवन भर की प्रक्रिया है। और यदि हर व्यक्ति अपने अंदर सुधार लाने का संकल्प ले तो परिवार, समाज और देश सभी में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। इसलिए हम आपसे कह सकते हैं कि वास्तविक बदलाव शब्दों से नहीं, कर्मों से आते हैं। और स्थायी बदलाव वही होता है जो दिल और सोच दोनों को बदल देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन वास्तविक बदलाव में समय लगता है। एक पेड़ को बड़ा होने में वर्षों लगते हैं साथियों, उसी प्रकार व्यक्ति का स्वभाव और आदतें भी धीरे धीरे बदलती हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि प्रयास करने के बाद तुरंत सफलता न मिले साथियों, तो निराश नहीं होना चाहिए। कई बार जागृति जी और अंजलि जी, हम देखते हैं कि व्यक्ति बीच रास्ते में ही हार मान लेता है, जबकि सफलता उसके बहुत करीब होती है। धैर्य व्यक्ति को मजबूत बनाता है साथियों, और उसे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
2: जी हाँ। बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आज मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया बदल दी है। यदि तकनीक का सही उपयोग किया जाए तो श्रोता साथियों, शिक्षा, रोजगार और जागरूकता तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन गलत उपयोग समाज को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यही बात करें जागृति जी और मनीषा, तकनीक का किस तरीके से हमें सकारात्मक उपयोग करना है, तो श्रोता साथियों, ऑनलाइन शिक्षा, खेती की नई जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी, छोटे व्यवसाय को बढ़ावा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तकनीक तभी उपयोगी है जब वह मानवता और विकास में काम आए।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि वास्तविक और स्थायी बदलाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक एक दिन में हमारे जीवन में उतर आएगी।
2: जी जी।
0: ये धीरे धीरे बनने वाली वो प्रक्रिया है जो इंसान की सोच में, आदतों में, व्यवहार में और कर्मों के भीतर बदल सकती है। दुनिया में हर बड़ा परिवर्तन किसी एक छोटे कदम से ही शुरू होता है मनीषा। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करता है, तभी सच्चे बदलाव की शुरुआत होती है। आज हम देखते हैं कि समाज में हर व्यक्ति बदलाव की बात करता है। कोई चाहता है कि लोग ईमानदार बने, कोई चाहता है कि युवा जिम्मेदार बने, और कोई चाहता है कि समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ा रहे। लेकिन हमें समझना होगा श्रोताओं कि केवल दूसरों से उम्मीद करने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन तब आता है जब हम स्वयं उदाहरण बनते हैं, जब हम समय का सम्मान करते हैं अंजलि, मेहनत को अपनाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं मनीषा, और अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तब हमारा व्यवहार दूसरों को भी प्रेरित करता है।
2: बिल्कुल।
0: इसलिए आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां जरूर आएंगी, लेकिन कई लोग हमारा मजाक भी उड़ाएंगे, कई बार हम असफलता भी हमें मिलेगी, मन टूटेगा भी और रास्ते भी कठिन लगेंगे।
2: जी जी।
0: लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। नदी भी पहाड़ों को एक दिन में नहीं काटती बल्कि लगातार बहते रहने से अपना रास्ता बना लेती है। उसी प्रकार निरंतर प्रयास करने वाला इंसान भी धीरे धीरे अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही अगर हम बात करेंगे गलतियों से हमें कैसे सीखना चाहिए, तो हम देखते हैं कि गलतियां हैं वो हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो कुछ कभी नया सीख नहीं पाता। लेकिन श्रोता साथियों, बुद्धिमान इसमें है कि हम अपनी गलतियों से सीख ले। कई लोग असफलताएं मिलने पर स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वे कभी नहीं बदल सकते। यह सोच गलत है साथियों। हर असफलता हमें कुछ सिखा

0: आती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को समझकर दोबारा गलती न करे तो वो वही सबसे बड़ी सफलता उसकी ताकत बन जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं हमारा स्वभाव भी उसके हिसाब से हो जाता है। यदि व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहेगा तो उसके विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। वहीं यदि कोई व्यक्ति प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के साथ रहेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसीलिए श्रोता साथियों, अच्छे मित्र, अच्छे शिक्षक, प्रेरणादायक व्यक्तियों के साथ अपने जीवन को बिताएं। सकारात्मक बदलाव लाने में यह आपकी मदद करेगा। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही जैसा कि हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि हमें बदलाव कैसे लाना है, क्योंकि हम देखते हैं कि बदलाव तो हम ले आते हैं लेकिन हाँ। बदलाव स्थायी नहीं होता है। यही बात करें जागृति जी और मनीषा की, पर्यावरण संरक्षण भी क्यों जरूरी है बदलाव के लिए। तो श्रोता साथियों, जलवायु परिवर्तन, जल संकट और प्रदूषण बड़ी समस्या चुका है। यदि समय रहते प्रकृति की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियां संकट में पड़ जाएंगी। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयास करने होंगे, जैसे कि पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक कम करना, स्वच्छता रखना, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना। क्योंकि श्रोता साथियों, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी जब तक स्थायी नहीं होगी तब तक हम जलवायु परिवर्तन के संकट से नहीं बच सकते। आज कई समस्याएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनना और समझना नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं जागृति जी और मनीषा कि परिवार में दूरी, समाज में तनाव, रिश्तों में टूटना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके लिए हमें संवाद के माध्यम से सुधार करने की जरूरत है। दूसरों की बातों को हमें ध्यान से सुनना है, गुस्से पर नियंत्रण करना है, सम्मान पूर्वक बात करनी है, बच्चों और बुजुर्गों को समय देना है, क्योंकि जहां वाद होता है वहाँ समाधान अवश्य निकलता है।
2: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि वास्तविक बदलाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। एक अच्छा इंसान पूरे परिवार को बदल सकता है, एक जागरूक परिवार पूरे समाज को प्रेरित कर सकता है और जागरूक समाज पूरे देश को नई दिशा भी दे सकता है। इसीलिए श्रोता साथियों, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा किसी एक व्यक्ति के साहस और संकल्प से शुरू हुए हैं। यदि हम अपने अंदर सकारात्मक सोच, अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और दया जैसे गुण विकसित करेंगे मनीषा, तो हमारा ही जीवन नहीं बल्कि आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा।
0: बिल्कुल,
2: और यही वास्तविक बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है। ये केवल हमारे शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई देता है। इसलिए श्रोता साथियों, हमें ठान लेना चाहिए कि हम केवल बदलाव की बात नहीं करेंगे बल्कि स्वयं ये बदलाव बनेंगे जैसे हम दुनिया में देखना चाहते हैं। हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जब इंसान अपनी सोच बदलता है अंजलि और मनीषा, तो उसका जीवन खुद ही बदल जाता है, और जब जीवन बदल जाता है तो समाज और देश बदलने में देर नहीं लगती है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि डर पर विजय प्राप्त कैसे करें, तो अंजलि जी और जागृति जी, हम देखते हैं कि डर व्यक्ति के विकास का सबसे बड़ा शत्रु होता है। असफलता का डर, लोगों की आलोचनाओं का डर, भविष्य की चिंता का डर, श्रोता साथियों, ये सभी चीजें व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती हैं। जागृति जी, जो व्यक्ति हर समय डरता रहता है वह कभी अपने अवसरों में लाभ नहीं उठा पाता। वास्तविक बदलाव के लिए डर का सामना करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति मंच पर बोलने से डरता है तो उसे धीरे धीरे छोटे छोटे समूहों में बात करनी होगी, अभ्यास करना होगा। श्रोता साथियों, कहते हैं ना, अभ्यास से हम कोई भी चीज है वो आसानी से कर सकते हैं। अभ्यास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमारे अंदर के डर को भी कम करती है। इसीलिए श्रोता साथियों, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कार्य करना। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे, जितना अच्छा आप कार्य करेंगे और जितना अच्छा आप बोलने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में जागृति जी और मनीषा बातें बहुत अच्छी हमारी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल, जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे वास्तविक और स्थायी बदलाव कैसे लाएं।
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम के माध्यम से जागृति जी और अंजलि जी हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही थी। हमने जाना था कि हम आदतों का निर्माण कैसे करें, अनुशासन में रहकर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और हमारे लिए बदलाव की आवश्यकता क्यों होती है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि हम भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और निराशा जैसी भावनाएं व्यक्ति के सोचने की शक्ति है उसको कमजोर कर देती है। साथियों, स्थायी बदलाव के लिए भावनात्मक संतुलन बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित रखना सीख लेता है जागृति जी, वह कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखता है। भावनाओं को दबाए नहीं बल्कि श्रोता साथियों उसे नई दिशा दे। साथ ही हम देखते हैं कि ध्यान, योग, सकारात्मक गतिविधियां हमारे मन को शांत करती हैं। जब मन शांत होता है साथियों, तब व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है और अपने ऊपर बेहतर तरीके से काम कर पाता है।
2: जी बिल्कुल, मनीषा आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि वास्तविक और स्थायी बदलाव कोई जादू नहीं है।
1: जी,
2: यह धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति की सोच, आदतों और जिम्मेदारियों से शुरू होता है। जागृति जी और मनीषा, हम देखते हैं कि केवल कानून, योजनाएं और भाषण समाज को पूरी तरह नहीं बदल सकते। असली बदलाव तब आता है जब लोग स्वयं जागरूक बनते हैं और अपने व्यवहार में सुधार करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बेहतर समाज में जीवन बिताएं, तो हमें आज से ही छोटे छोटे कदम उठाने होंगे।
1: जी हाँ।
2: जैसे कि परिवार में प्रेम बढ़ाना होगा, बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, महिलाओं का सम्मान करना होगा, शिक्षा को महत्व देना होगा, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और समाज के प्रति जिम्मेदार बनना होगा। ये सभी स्थायी बदलाव की नींव है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जीवन में सफलता, सम्मान और खुशी लोगों को मिलती है जो परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि हर दिन हमें एक नया अवसर देती है मनीषा,
2: बिल्कुल,
1: सीखने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और पहले से अधिक मजबूत बनने का। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का साहस रखता है, वही एक दिन बड़ी से बड़ी उपलब्धियों तक पहुँचता है। समाज भी उन्हीं लोगों से बदलता है जो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय सही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच। ऐसे गुण जो है वो न केवल व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं श्रोताओं, बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो उनका प्रभाव धीरे धीरे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचता है।
2: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा श्रोताओं कि बदलाव किसी एक बड़े अवसर का इंतजार नहीं करता अंजलि, वह हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों से जन्म लेता है। समय का सम्मान करना, दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा करना, सीखते रहना, कठिनाइयों के सामने हार न मानना, यही छोटे छोटे कदम मिलकर जीवन को नई पहचान देते हैं मनीषा। इसीलिए हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आवश्यक है कि हम अपने सपनों को केवल कल्पना तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। जब मन में विश्वास, लक्ष्य के प्रति समर्पण और कर्म में ईमानदारी होते हैं, तब बदलाव केवल संभव ही नहीं बल्कि स्थायी भी बन जाते हैं। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे कि परिवर्तन की सबसे बड़ी शुरुआत उस दिन से होती है जब इंसान बहाने छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देता है। जो खुद को बदलने का साहस रखता है और वही भविष्य को बदलने की ताकत भी रखता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास है वो वहीं रुक जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में सफल होने के लिए हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ज्ञान व्यक्ति को विस्तृत बनाता है और जो उसे समय के साथ आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है साथियों, जैसे कि पुस्तकें पढ़ना, अच्छे लोगों के अनुभवों को सुनना, नई तकनीकों को समझना, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। सीखने की इच्छा व्यक्ति को जिज्ञासु बनाती है साथियों, और यही जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि वास्तविक और स्थायी बदलाव कोई जादू नहीं है जो एक दिन में आ जाए साथियों। यदि निरंतर प्रयास, धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच का परिणाम है। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को समझना होगा, छोटी छोटी आदतें बनानी होगी, सही सोच रखनी होगी, समय का सदुपयोग करना होगा और हमारे आत्मविश्वास से उसको भी बढ़ाना होगा। इसी से साथियों हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे।
2: जी हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है।
1: बिल्कुल,
2: नई तकनीक, नई सुविधाएं और नए अवसर लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन जागृति जी, इनके साथ ही कई चुनौतियां बढ़ रही है। तनाव, अकेलापन, रिश्तों में दूरी, स्वार्थ, पर्यावरण संकट, सामाजिक असमानता जैसे समस्याएं यह संकेत देती है कि केवल आर्थिक और भौतिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। यदि विकास के साथ इंसानियत, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी नहीं जुड़ी होगी तो बदलाव अधूरा रह जाएगा।
1: जी हाँ।
2: कहना चाहेंगे जागृति जी और मनीषा श्रोता साथियों से कि स्थायी बदलाव के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
2: यदि हम केवल दूसरों की गलतियां देखते रहेंगे और स्वयं कोई कदम नहीं उठाएंगे तो परिवर्तन की राह कठिन बनी रहेगी। लेकिन यदि हर व्यक्ति यह सोच ले कि उसे अपने स्तर पर कुछ अच्छा करना है तो धीरे धीरे एक नई सकारात्मक लहर पैदा हो सकती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जीवन कभी अपने आप नहीं बदलता, उसे बदलने का साहस हमें खुद जुटाना होता है।
2: बिल्कुल,
1: परिस्थितियां चाहे कठिन हो, अगर इंसान के अंदर आगे बढ़ने की आग जलती रहे तो कोई भी रुकावट उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। इसीलिए श्रोताओं, हार, असफलता, आलोचना और संघर्ष ये सब रास्ते के पत्थर जरूर है, लेकिन इन्हीं पत्थरों को सीढ़ी बनाकर मजबूत लोग अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। इसलिए याद रखिए, हर सुबह हमें एक नया मौका देती है बीते हुए कल से बेहतर बनने का। अगर कल गलती हुई थी तो आज सुधार का अवसर है। अगर कल हिम्मत टूट गई थी तो आज फिर से उठ खड़े होने का समय भी है। जिंदगी उन लोगों के लिए नहीं रुकती जो बहानों में जीते हैं, बल्कि वह उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत, विश्वास और विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ते रहते हैं।
2: बिल्कुल,
1: इसीलिए आज से डर नहीं, हिम्मत चुनिए, आलस नहीं, मेहनत चुनिए, शिकायत नहीं, प्रयास चुनिए। क्योंकि जो इंसान खुद पर काम करता है मनीषा और अंजलि, उसकी जिंदगी धीरे धीरे नई ऊंचाइयों तक पहुँचने लगती है।
2: बिल्कुल,
1: तो कहा भी गया है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, हिम्मत हारने वाले खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अपने आप को खुद बेहतर बनाइए तो समझिए आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि वास्तविक और स्थायी बदलाव कोई बाहरी दिखावा नहीं है।
1: जी हाँ।
0: बल्कि भीतर की प्रक्रिया है। श्रोता साथियों, यह तब शुरू होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और निरंतर सुधार करने का निर्णय लेता है।
1: बिल्कुल,
0: सही सोच, आत्मनियंत्रण, सीखने की इच्छा और सकारात्मक सोच व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। बदलाव का मार्ग श्रोता साथियों आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है।
1: जी जी।
0: हर छोटा प्रयास व्यक्ति को उसके लक्ष्य के करीब ले जाता है। श्रोता साथियों, यदि इंसान धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो वह अपने जीवन को और अच्छा बना सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हमें हर परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश पैदा करता है जागृति जी, तब उसका पूरा जीवन उजाले से भर जाता है। यही वास्तविक और स्थायी बदलाव की पहचान होती है।
2: जी हाँ। बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि हर व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन में अच्छाई, अनुशासन, ईमानदारी और सकारात्मक सोच को स्थान दे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं उनकी शुरुआत हमेशा किसी एक जागरूक सोच और छोटे प्रयास से हुई है।
1: बिल्कुल,
2: यदि आज हम सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो आने वाला कल निश्चित रूप से अधिक सुंदर, सुरक्षित और संवेदनशील होगा।
1: जी हाँ अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को बस अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि कभी खुद को कमजोर मत समझिए। एक छोटा सा दीपक भी पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है। उसी तरह हमारा एक अच्छा निर्णय, एक अच्छी आदत और एक सकारात्मक कदम हमारे पूरे भविष्य को बदल सकता है। बदलाव बाहर से नहीं आएंगे, वो हमारे अंदर के विश्वास को जन्म देते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इन्हीं उम्मीदों के साथ अब आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि समय का मान रखना होगा। समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा लेने से पहले आपको हम हमारा पता बताना चाहेंगे, ताकि आज की जो भी बातें रही कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, वो बातें आपको कैसी लगी, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
2: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को
0: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला हमारा सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक चलता है, और इसी बीच आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस करते हैं साथियों। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपनी फरमाइश के गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना क्या है श्रोता साथियों, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करना है, मैसेज करना है, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। नंबर में फिर से बताना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि इसी नंबर के जरिए आप अपने राय सुझाव और फरमाइश के गीत हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9460051234। तो हमें इंतजार रहेगा दोस्तों आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में शुरुआत हो चुकी है फरमाइशों की ओर बढ़ना चाहेंगे मैं हमारी पहली फरमाइश की ओर। इसी बीच साथियों, पहली फरमाइश आई है फजल का पंजाब से। फिल्म का नाम है इश्क गीत के बोल हैं जब हम जमा होंगे। इस प्यारे से गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और शब्बीर कुमार जी ने। फरमाइश करता है इस गीत को सुनना चाह रहे फजल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशुल खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टुवांशी खेड़ा, आरबीके खेड़ा जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। साथियों, नाम बता दूं आपको, जुड़ना चाह रहे हैं पंडरपुर से हैं जाखिल मुलाड़ी, सुबेया सलमान, सलमा मुमताज, दिलसाद नसरबी, बानवी बादशाह मुलाड़ी और समस्त मुलाड़ी परिवार सदस्यगण। मस्तानपुरा पुन्ना जंक्शन से हैं अनंता भगत, अनुआ चेतन, सुलोचना भगत। इसी बीच और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। रविदास चौक से जुड़ रहे हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं उदयन पाल, जहीन पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमरेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त बघेल परिवार सदस्यगण। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं जब हम जमा होंगे, तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों, फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है, तो मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी साथियों पहली और अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, पहली फरमाइश का गीत बड़ा प्यारा सा था, जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे। इसी गीत के बाद अगली फरमाइश आई है कश्मीर से, जुड़ रहे हैं श्रुता साथी हमारे। फिल्म का नाम है श्रुता साथियों इम्तिहान, गीत के बोल हैं चाह तो बहुत। कश्मीर से श्रुता साथी हैं फैजर अमरजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं मजनू का टिल्ला से जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विन विपुल कामड़े जी जुड़ना चाह रहे हैं। श्रोता साथी हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बता दूं, गंजू द्वारा से है शमशुल कमर राही, और छत्तीसगढ़ से है सोहन जोशी, अर्चना जोशी। खंडवा से है राजेश सेन, सुरेखा सेन। मरुष जंगेल से जुड़ना चाह रहे हैं उत्तम सिंह जंगेल। कोका बिलाई से अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नननी जंगेल। इसी भी श्रोता साथी और भी हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। आपको नाम बता दूं श्रोता साथियों, जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मनीष देवी, अर्जुन भारती और सुधीर नूतन। भुवनेश्वरी देवी जी, दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। इसी गीत के साथ और भी दोस्त सुनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा और प्रहलाद वर्मा, खूबचंद्र जी वर्मा, मुरली जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चाहा तो बहुत। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है नादेड़ महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों विजय पथ। गीत के बोल हैं राह में उनसे मुलाकात हो गई। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जुड़ रहे हैं मरगड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। बोरखड़ा पितरामल से हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार जी और दीक्षा कुश मुणत जी। इसी बीच गंजुड़वाड़ा से जुड़ रहे हैं शमशुल कमर राय, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी जी। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, कुन्या श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोम, मानस राज। राजनांदगांव गांव छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दूषण, प्रांजल समीक्षा, बीबी आराध्या साहू। तो आइए श्रोता साथी सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं राह में उनसे मुलाकात हो गई।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है कुरावली सदर बाजार से। साथियों, फिल्म का नाम आपको बताना चाहूंगी, चमत्कार। गीत के बोल हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। इसी बीच साथी और भी हैं जो जुड़ रहे हैं मधुबनी बिहार से, शबीर परवाना, शाहिद अली, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक, सचिन, रोहित शर्मा। गोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। और भी हमारे दोस्त इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहेंगे साथियों, जुड़ रहे हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल, साहिल भारती बघेल। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत श्रोता साथियों हमारे बीच आया है दादरी गेट भीमाने से। फिल्म का नाम है साथियों जिगर, गीत के बोल है प्यार के कागज पे। इस गीत को आवाज दी लता मंगेशकर जी, उदित नारायण जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। हमारे साथी और भी पानीपत से जुड़ रहे हैं, भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष मल्होत्रा, लड़कुल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोनिका सिक्का, डुगू भाविक सिक्का, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष रजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से हैं राहुल, रचिता खुराना, मेघा, विशु, साक्षी, छोटू, अनुज खुराना जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी महाराष्ट्र मलकापुर से जुड़ रहे हैं, शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनादी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय खिरोडकर। साथी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और भी दोस्त, जफराबाद सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणय देशमुख, श्रमित देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख, सरफुद्दीन अंसारी, खातुन अंसारी, सुरेत, रमेश साहू, ये बक्सर बिहार से हैं, डब्ल्यू अंसारी, सोनमित, अदीपा, दानिश अंसारी जी डुमराव बिहार से जुड़ रहे हैं, गोल बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य और परमानंद आर्य। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं प्यार के कागज पे। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों स्किप के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है साथियों सहारनपुर से। फिल्म का नाम है इम्तिहान। गीत के बोल हैं इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना हसन, अक्सर नाजमा, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब हसन जी। और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय, संध्या, शिवम कोलाम। इसी बीच हमारे और भी दोस्त दुर्गा कॉलोनी हांसे से जुड़ रहे हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू टप्पू जी। पटेल नगर मौलत से रमेश कुमार जजोरिया, कितनी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुट्टू जी। इसी बीच साथी जुड़ रहे हैं सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़तकर, श्रोम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर जी। साथियों बिलासपुर छत्तीसगढ़ उच्च भट्टी से जुड़ना चाह रहे हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी जी। और भी दोस्त हरिद्वार से जुड़ना चाह रहे हैं आजाद नगर लक्सर से ताजबन अंसारी, गुलाम शाबी राय, मेहराज जहां। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है दतरंगे बाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है साथियों सड़क। गीत के बोल हैं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। इस गीत को आवाज दिए कुमार सानू जी और अनुराधा पोडवाल जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखलाल वर्मा जी। जुड़ना चाह रहे हैं सारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। जोधपुर राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, मोहित चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी हिमाक्षी जी। बाबा कुटीर रायगढ़ से है शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान जी। नवाशहर पंजाब से है गंगादीप थांडी, तिप्ता कुमारी थांडी, प्रियंक थांडी और प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, प्रियम वानिका, वाणी थांडी जी। बिलड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। कुंभार गली कोलगाम से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुमार जी। इसी बीच और भी साथी गंजूडवाड़ा से भी जुड़ रहे हैं, मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, एयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही। राजकोट से है मधुसूदन भट्ट जी, आरती भट्ट, जस्मीन और प्रयागराज भट्ट। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है श्रीरामपुर से। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी, गीत के बोल है चुरा के दिल मेरा। इस गीत की फरमाइश करते हैं अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रही है अजय सोनू ने, करिश्मा सोनू ने, अविका सोनू ने, शाइशा जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं अनारकली बाजार जगराव से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीविका मल्होत्रा, गविया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल पुरी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीरामपुर से, अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने जी। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोल है चुरा के दिल मेरा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चोरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है आपकी कसम, गीत के बोल हैं करवटे बदलते रहे। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करते हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुशानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। शिवाजी नगर से राजेश खोबरखेड़ी, शिवसागर खोबरखेड़ी, इंदिरा ताई और जंगूताई। इसी बीच जुम्माचार्य दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुम्माचार्य राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। राहुल खुराना, रचिता खुराना जी। जलालाबाद वेस्ट से जुम्माचार्य सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। इसी बीच जुम्माचार्य एकता गोल में रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। इस गीत के अनुरोध करते हैं लोर में चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है करवटे बदलते रहे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाकोत राजस्थान से। फिल्म का नाम है खानदान, गीत के बोल हैं नील गगन पर उड़ते बादल। इस गीत को आवाज दी है आशा जी और मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पथरोट सी विजया मटेकर, सुनीता मटेकर, अक्षया मटेकर, राधिका मटेकर, ऋषिकेश जी अंबाटेकर। इस गीत के अनुरोध करता है आवरपुर से शेख हबीब, छोटू भाई शेख, साजन बेगम, फैजा शेख, फारूक शेख, वसीम जी शेख, अफसान अश्मीरा जी, अरफान जी, जिनित जी, फरहान अब्दुल्लोहीवाला और शाहिदा जी शेख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष सोनी, रोहिणी, ऋतिक बलवीर सिंह जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी नील गगर पर उड़ते बादल। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बेंगलोर से। फिल्म का नाम है दिल परदेसी हो गया। गीत की बोल है मेरा सोना सजन घर आया। इस गीत की फरमाइश करते हैं राजेश मीना जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से अनिल कुमार, वैशाली जी, प्रतिज्ञा जी और वैष्णवी, गायत्री और प्रजगेश जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से उभी पाल, जय सिंह पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, दिनेश और दिव्यांशी जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं चिलावाड़ी अकोला से अमोल इगले, अर्चना इगले, सर्वेज इगले, अधीरा जी इगले, जानवी और इगले परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गजरद्वारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद अलफेज जी और सिफा जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है मेरा सोना सजन घर आया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है जनता की अदालत। गीत के बोल हैं हम भी पागल तुम भी पागल। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजार, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सूरी जाधव, अनीता जाधव, आरती जाधव, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बीबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव, संगीता जी जाधव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा और योगेश जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है हम भी पागल तुम भी पागल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकट रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मेरे लाल, गीत के बोल हैं पायल के झनकार रस्ते रस्ते। इस गीत की फरमाइश करते हैं चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल सी उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि बन्ने, आरुषि शोरिया, दिनेश जी। मस्तानपुरा से जुड़ना चाह रही है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज आर्यन वर्मा, बिबी आरो यशिका जी वर्मा, अंजलि वर्मा, श्वेता जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से विकास बंसोड़, रेखा बंसोड़, अदिति बंसोड़, वैभव जी। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं आकाश और प्रिया जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पायल के जनकार रस्ते रस्ते। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है ग्वालियर से। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना। पप्पी जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पथरिया से मीनू मरावी, लता मरावी, अनुराग जी मरावी और अभिनव जी मरावी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मॉडल ट्यून कर्नल से सुधीर न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा जी, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सुहानी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं काजगर से एस असलम सेफी, जुबनेशा बेगम, अकरम सेफी, सदाम सेफी, सोनी सेफी, जावेद जी सेफी और आबाजी खान। महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हिमकेश्वर शाहू, करण राहुल शाहू, चंबा जी शाहू। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं रावल खुराना और रचिता जी खुराना। हरियाणा से जुड़ रहे हैं बिट्टू भाटिया और रीटा जी भाटिया। गंजूद्वारा से जुड़ना चाह रही हैं यासीन हाशमी, नवजा बेगम हाशमी, तोसीफ हाशमी और तोइनूर जी और कलीम अंसारी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ना चाह रही नारायण इगले, सोपान जी और आशीष मेहकर जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोल है सुन सुन बरसात की धुन। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला, गीत के बोल है मैंने पूछा चांद से। इस गीत की फरमाइश करता है निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबानजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुट रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रही है अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, हीरामन शिंदी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी गुड़ाने। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पुनावली से हीरामन शिंदी, शीला देवी शिंदी, सिद्धार्थ गुड़ाने जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाली खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और आरबीजी खेड़ा। इस गीत के अनुरोध करता है पुरावली से साईद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, शमीम अंसारी, नरसिंह अंसारी और शमाजी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं शरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है मैंने पूछा चांद से। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। श्रोता साथियों जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। तो श्रोताओं जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा में आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहां भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता, फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता।
1: सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है।
2: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
1: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है। बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो। याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बोन हूँ था का? अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना ना कदम है ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है कि कला में डूबे रहिए, ये हमारी बढ़ती उम्र की गति को भी घटाता है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, जैसे कि मनुष्य केवल शरीर से नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और रचनात्मकता से भी जीवित रहता है। जीवन की भागदौड़, तनाव, जिम्मेदारियां और बढ़ती उम्र अक्सर व्यक्ति को भीतर से थका देती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को फिर से जीवंत बना सकती है और वो है कला। कला केवल चित्र बनाना या गीत गाना नहीं है बल्कि आत्मा की वो भाषा है श्रोताओं, जो मनुष्य को भीतर से युवा बनाए रखती है।
0: जी जी,
1: चाहे संगीत हो, नृत्य हो, लेखन हो, चित्रकारी हो, अभिनय, कविता या हस्तकला, हर कला व्यक्ति के मन को शांति और जीवन को नई ऊर्जा देती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत क्यों ना दोस्तों को पहले गीत के साथ करवाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि गाना सुनना भी एक कला है। तो श्रोता साथियों, आइए यहाँ पर पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों शुरुआत में बहुत ही प्यारा सा गीत हमारा रहा और विषय भी आज का बड़ा ही रोचक है कि कला में डूबे हमें रहना है, ये हमारी उम्र बढ़ने की रफ्तार को घटाएगा। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था कि हमारा शरीर केवल शरीर नहीं है बल्कि ये भावनाओं, कल्पनाओं, अनुभव और संवेदनाओं का एक संगम है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, जब जीवन केवल भागदौड़, प्रतियोगिता और तनाव तक सीमित हो जाता है तब इंसान भीतर से ही थकने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: उसके चेहरे की चमक कम होने लगती है, मन बोझिल हो जाता है और उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। जागृति जी,
1: जी हाँ।
0: लेकिन इसी जीवन में एक ऐसी शक्ति भी है जो मन को जवान बनाकर रखती है, आत्मा को ताजगी देती है और जीवन में नई ऊर्जा लेकर आती है, और वो है कला। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कला में रुचि रखने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ, सकारात्मक और सक्रिय रहते हैं। कला व्यक्ति को तनाव से दूर रखती है और उसकी सोच को नया आकार देती है।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि कहा जाता है कि कला में डूबे रहिए, उम्र बढ़ेगी लेकिन मन बूढ़ा नहीं होगा।
0: जी जी
1: श्रोताओं, प्राचीन समय से ही कला मनुष्य के जीवन का हिस्सा रही है। गुफाओं की चित्रकारी से लेकर आधुनिक डिजिटल कला तक इंसान ने हमेशा अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से ही व्यक्त किया है। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: जब कोई व्यक्ति संगीत सुनता है, कविता लिखता है या रंगों से चित्र बनाता है तब उसका मन तनाव से दूर होकर शांति महसूस करता है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मन की चिकित्सा भी है। आज की तेज जिंदगी में लोग चिंता, अकेलेपन और तनाव का शिकार हो रहे हैं, ऐसे समय में कला मन को सहारा देती है और व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, और हम देखते हैं कि कला केवल चित्र बनाना या गीत गाना नहीं होता बल्कि कला तो वो माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अपने भीतर की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों कोई संगीत में डूब जाता है तो कोई कविता में, कोई नृत्य में तो कोई रंगों में, साथ ही कोई अभिनय और मिट्टी को आकार देने में भी। देखते हैं कि कला इंसान को भीतर से जीवित रखती है। इसी कारण से श्रोता साथियों, जो लोग कला से जुड़े रहते हैं वे उम्र बढ़ने के बावजूद भी भीतर से युवा बने रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आज के समय में हमारे युवा साथी सबसे अधिक मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। जागृति जी, पढ़ाई, सोशल मीडिया, करियर, अकेलापन और भविष्य की चिंता ने युवाओं के जीवन को तनावपूर्ण बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में कला केवल उनके लिए मनोरंजन नहीं होगी बल्कि मानसिक और भावनात्मक उपचार भी बन सकती है। अगर बात करें तो श्रोता साथियों, कई वैज्ञानिक शोध भी ये बताते हैं कि कला से जुड़ाव होने पर तनाव कम रहता है। कला मस्तिष्क को सक्रिय बनाकर रखती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देख सकते हैं कि कला कई रूपों में जीवन में उपस्थित होती है, जैसे कि कहानी सुनना, हस्तशिल्प, लेखन, रंगमंच, चित्रकला, नृत्य, संगीत। दोस्तों, हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई कला जरूर छिपी हुई होती है।
1: जी हाँ,
0: बस जरूरत उसे पहचानने की है और समय देने की है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है लेकिन मानसिक रूप से बूढ़ा होना हमारी सोच पर निर्भर करता है। कई लोग कम उम्र में ही निराश, तनावग्रस्त और थके हुए दिखाई देते हैं श्रोताओं, वहीं कुछ लोग अधिक उम्र में भी उत्साह और ऊर्जा से भरे रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसका बड़ा कारण उनका जीवन जीने का तरीका होता है।
0: जी जी,
1: जब व्यक्ति केवल काम और जिम्मेदारियों में उलझ जाता है तब उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है, वो नई चीजें सीखना छोड़ देता है और जीवन में उत्साह कम होने लगता है।
0: जी हाँ जागृति जी,
1: लेकिन श्रोताओं, कला व्यक्ति के भीतर जिज्ञासा और आनंद को जीवित रखती है। कला से जुड़ा व्यक्ति हर दिन कुछ नया महसूस करता है और यही उसे मानसिक रूप से युवा बनाए रखता है। कहना चाहेंगे कशिश कि संगीत ऐसी कला है जो सीधे दिल को छूती है, मधुर संगीत सुनने से तनाव कम होता है। चित्रकारी और रचनात्मकता की बात करें तो चित्रकारी केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है।
0: बिल्कुल,
1: जब व्यक्ति रंगों के साथ समय बिताता है तब उसका मन शांति महसूस करता है। लेखन की बात करें, कविता की बात करें तो लेखन व्यक्ति के मन का दर्पण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करता है तब उसका मन बहुत हल्का महसूस होता है।
0: बिल्कुल,
1: डायरी लिखना, कविता रचना या कहानी लिखना मानसिक तनाव को कम करने का प्रभावी तरीका है।
0: जी हाँ,
1: इसी तरह नृत्य और शारीरिक ऊर्जा की बात करें श्रोता साथियों, तो नृत्य केवल कला नहीं बल्कि व्यायाम भी है। जब व्यक्ति नृत्य करता है तो उसका शरीर सक्रिय रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नृत्य तनाव को दूर करके शरीर में नई ऊर्जा भर देता है।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग नियमित रूप से नृत्य करते हैं वे अधिक आत्मविश्वासी और सक्रिय रहते हैं।
0: जी हाँ,
1: तो कहना चाहेंगे श्रोता साथियों आपसे कि आज के आधुनिक समाज में लोग भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने बातचीत को कम कर दिया है। ऐसे समय में कला व्यक्ति को अपने भीतर से जोड़ती है कशिश।
0: बिल्कुल,
1: और जब कोई व्यक्ति कविता लिखता है, चित्र बनाता है जैसा कि आपने कहा था, संगीत सुनता है, तब वह खुद के साथ समय बिताता है। इससे मन शांत होता है और अकेलापन कम होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों से हमारी बातें कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छी चल रही है और विषय भी हमारा काफी जरूरी है श्रोता साथियों से बातचीत का।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में दोस्तों को करवा देते हैं।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि हम बात कर रहे थे, कला में डूबे रहने से हमारी बढ़ती उम्र की गति घटती है। तो जैसा कि गीत से पहले हमने आपको कला और मनुष्य के गहरे संबंध के बारे में बताया था, बढ़ती उम्र और मानसिक थकान के बारे में बताया था, संगीत, चित्रकारी, रचनात्मकता, लेखन, कविता के महत्व के बारे में भी हमने जाना था। यही जानते हैं कि बुजुर्गों के जीवन में कला का क्या महत्व होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि कशिश, कई बुजुर्ग लोग रिटायरमेंट के बाद अकेलापन और निराशा महसूस करते हैं। यदि वे संगीत, चित्रकारी, बागवानी, लेखन या हस्तकला जैसी गतिविधियों से जुड़ जाए तो उनका जीवन फिर से उत्साह से भर सकता है। कला बुजुर्गों के मन को सक्रिय रखती है और उन्हें सकारात्मक सोच देती है, इससे याददाश्त भी श्रोताओं बेहतर रहती है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, अगर लोक कला और संस्कृति के महत्व को लेकर बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत कला और संस्कृति का देश है। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: हमारे लोकगीत, लोक नृत्य, कठपुतली कला, मिट्टी की कला और पारंपरिक चित्रकला हमारी पहचान है। जब युवा साथी इन कलाओं से जुड़ेंगे तब वे अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: इससे उनमें गर्व और आत्मीयता की भावना पैदा होगी। बस श्रोता साथियों, आज जरूरत है कि युवा केवल आधुनिक कला ही नहीं बल्कि अपनी लोक कलाओं को भी अपनाए।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि आज के हमारे युवा साथी घंटों मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताते हैं। इससे उनकी आंखों पर भी असर पड़ रहा है, नींद खराब हो रही है, उनमें मानसिक तनाव बढ़ रहा है और रचनात्मकता की कमी देखी जा रही है। वहीं इसके विपरीत देखा जाए तो कला जो है वो इंसान को सृजन की ओर ले जाती है। जागृति,
0: बिल्कुल,
1: मोबाइल केवल जानकारी दे सकता है साथियों, लेकिन कला जीवन में अनुभव और संवेदना भरती है।
0: और हम एक कहानी के माध्यम से श्रोता साथियों आपको बता सकते हैं कि जैसे कि एक शहर में 65 वर्षीय रमेश जी रहते थे। नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद वे बहुत उदास रहने लगे थे। कशिश,
1: बिल्कुल,
0: उन्हें लगता था कि अब जीवन में कुछ नया नहीं बचा है। एक दिन उनकी बेटी उन्हें चित्रकारी की कक्षा में ले गई। शुरुआत में रमेश जी हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रंगों से दोस्ती कर ली। वे रोज नए चित्र बनाने लगे। कुछ महीनों बाद उनका स्वभाव बदल गया। अब वे पहले से अधिक खुश, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी दिखने लगे।
1: बिल्कुल।
0: लोग उनसे पूछते, आपकी उम्र बढ़ रही है फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? रमेश जी मुस्कुराकर कहते, मैंने उम्र गिनना छोड़ दिया है, अब मैं रंगों के साथ जीता हूँ। ये कहानी बताती है श्रोताओं कि कला केवल समय बिताने का साधन नहीं है बल्कि जीवन को फिर से जीने की प्रेरणा है।
1: बिल्कुल।
0: जो कला में खो जाता है वो जीवन को फिर से पा जाता है। आज के युवा पढ़ाई, प्रतियोगिता और करियर के दबाव में तनाव का सामना कर रहे हैं। कशिश, ऐसे समय में कला हमारे युवा साथियों के मन को संतुलित रखने में मदद करती है।
1: बिल्कुल।
0: संगीत, लेखन, अभिनय या चित्रकारी जैसी गतिविधियाँ युवाओं को मानसिक राहत देती है।
1: बिल्कुल।
0: हम कह सकते हैं कि कला युवाओं की रचनात्मक सोच को बढ़ाती है और उन्हें सकारात्मक दिशा भी देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। दोस्तों, कहा जा सकता है कि कला केवल शौक नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें तनाव से बचाती है, मन को हमारे प्रसन्न रखती है और उम्र बढ़ने की रफ्तार को भी धीमा करती है। जागृति जी, जैसा कि हमने हमारे साथियों को पहले भी बताया कि जो लोग कला में डूबे रहते हैं वे जीवन को केवल बिताते नहीं है बल्कि महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनके भीतर उत्साह रहता है, चीजों को सीखने की जिज्ञासा रहती है और संवेदनाएं भी जीवित रहती है। आज के हमारे युवा साथियों की आवश्यकता ये है कि वे तकनीक और व्यस्तता के बीच अपने जीवन में कला के लिए भी जगह बनाएं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि दोस्तों, कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक शांति और लंबे समय तक युवा बने रहने का माध्यम है। जीवन को केवल जिम्मेदारियों की किताब मत बनाइए साथियों, उसमें संगीत का एक पन्ना जोड़िए, रंगों की थोड़ी चमक भरिए और शब्दों की मिठास मिलाइए और साथ ही भावनाओं को बहने दीजिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जिस इंसान के जीवन में कला जीवित रहती है उसके भीतर की युवावस्था भी लंबे समय तक जीवित रहती है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि जीवन केवल काम, पैसा और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। यदि जीवन में कला नहीं होगी तो मन धीरे धीरे सूखने लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: कला व्यक्ति को भीतर से जीवित रखती है, जैसा कि अभी आपने कहा था, और ये तनाव को कम करती है, मन को शांति देती है और जीवन में उत्साह भरती है। उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है श्रोताओं, लेकिन मन को युवा बनाए रखना हमारे हाथ में जरूर है। जो व्यक्ति कला से जुड़ा रहता है वो जीवन को और अधिक सुंदर, सकारात्मक और आनंदमय बना लेता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि हमें अपने जीवन में किसी न किसी कला को जरूर अपनाना होगा, चाहे थोड़ा समय ही क्यों न हो। कला के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि कला केवल शौक नहीं बल्कि जीवन को खुशहाल बनाने का माध्यम है।
1: जी हाँ।
0: अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि उम्र शरीर की बढ़ती है लेकिन कला मन को हमेशा जवान रखती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: और देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनवाएं यहाँ पर।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हमारी आपसे बातें चल रही थी वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: चोरी जन्मत की सकदार है। कानून ने आवात मानी है, न पन्या पूटे न हक को ले सके, न रिवाज न सच ने बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक, इन्हें पहचान। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
0: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्र अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
1: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बच्चों में दिखावे की बढ़ती आदत और उसके असर को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश के बचपन वह समय होता है जब बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, अपने सपनों को आकार देते हैं और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन आज का दौर पहले जैसा नहीं रहा।
0: बिल्कुल,
1: अब बच्चों के बीच केवल पढ़ाई, खेल और अच्छे व्यवहार की चर्चा नहीं होती बल्कि कपड़े, मोबाइल, महंगे खिलौने, ब्रांडेड चीजें, सोशल मीडिया और दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ भी बढ़ती जा रही है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, धीरे धीरे यह होड़ बच्चों के स्वभाव का हिस्सा बनती जा रही है। आज कई बच्चे अपनी खुशी से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कशिश कि लोग उसे देखते हैं, किसके पास नया मोबाइल है, किसके जूते ज्यादा महंगे हैं, कौन सोशल मीडिया पर ज्यादा अच्छा दिख रहा है, किसकी पार्टी ज्यादा बड़ी हुई। ये बातें बच्चों के मन पर असर डाल रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: यह केवल एक आदत नहीं है श्रोता साथियों बल्कि धीरे धीरे मानसिक और सामाजिक समस्याओं का रूप लेती जा रही है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ गीत सुनवाए हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों में दिखावे की बढ़ती आदत और उसके क्या असर हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले बताया था कि कई बार माता पिता कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। अगर बात करें दिखावे के असर की, तो श्रोता साथियों, दिखावा केवल महंगे कपड़े पहनना या बड़ी चीजें खरीदना नहीं होता। दिखावा जो है वो मानसिकता है श्रोता साथियों, जिसमें इंसान दूसरों को प्रभावित करने वाली अपनी वास्तविक स्थिति से अलग छवि बनाने की कोशिश करता है।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, जब बच्चा यह सोचने लगे कि उसे लोगों के सामने हमेशा सबसे अच्छा ही दिखना है, तभी से दिखावे की शुरुआत हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: यह आदत श्रोता साथियों धीरे धीरे हमारे बच्चों को वास्तविक जीवन से दूर ले जाती है, और वो जो बच्चा है वो अपनी सच्ची खुशी के बजाय बाहरी प्रशंसा को ज्यादा महत्व देने लगता है।
1: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों बात आती है कि बच्चों में दिखावे की आदत क्यों बढ़ रही है। तो श्रोता साथियों, आज छोटे बच्चे भी मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।
0: जी,
1: वे रोज ऐसे वीडियो देखते हैं जहां महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, शानदार कमरे, चमक दमक दिखाई देती है। धीरे धीरे बच्चे ये मानने लगते हैं कि अच्छा जीवन वही है जिसमें ज्यादा दिखावा हो।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का केवल अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन बच्चे ये समझ नहीं पाते, वे तुलना करना शुरू कर देते हैं और खुद को कम महसूस करने लगते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी,
1: इसके साथ आजकल कशिश माता पिता की प्रतिस्पर्धा भी सामने आती है। कई बार बड़े लोग खुद अनजाने में बच्चों में दिखावे की आदत डाल देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब माता पिता दूसरों के सामने अपने बच्चों की चीजों, स्कूल, कपड़ों या उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, तब बच्चे भी यही सीखते हैं कि समाज में सम्मान पाने के लिए दिखावा जरूरी है।
0: जी जी,
1: बच्चों पर उनके दोस्तों का भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि श्रोता साथियों, अगर किसी समूह में महंगी चीजों का महत्व दिखाया जाता है तो बाकी बच्चे भी उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे केवल दोस्ती बनाए रखने के लिए अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करवाने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये भी हम देखते हैं कि बच्चों पर दोस्ती का दबाव होने के कारण भी ये सारी दिखावे की जो संस्कृति है वो बढ़ती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें तो हम देखते हैं कि विज्ञापन और बाजारवाद का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जैसे कि आज विज्ञापन बच्चों को सीधे प्रभावित कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: हर चीज को स्टाइल, फैशन और स्टेटस से जोड़कर दिखाया जाता है। ऐसे में बच्चों को ये लगता है दोस्तों कि अगर उनके पास नई चीजें नहीं होंगी तो वे पीछे रह जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि सादगी की शिक्षा भी कम हो रही है। जैसे कि पहले बच्चों को सादगी, संतोष और व्यवहार की शिक्षा ज्यादा दी जाती थी।
1: बिल्कुल,
0: अब धीरे धीरे ये बातें कम होती जा रही हैं अंजलि जी। और परिवारों में समय की कमी के कारण बच्चों को जीवन की मूल्य की सीख कम मिल पा रही है।
1: जी हाँ,
0: जिसके कारण हम देखते हैं कि बच्चे दिखावे की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये उनकी आदत बन चुकी है।
1: बिल्कुल, यही अब बात आती है कशिश के, दिखावे का बच्चों के मानसिक असर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्रोता साथियों, इससे बच्चों के आत्मविश्वास में कमी आती है। जो बच्चे दूसरों जैसी चीजें नहीं खरीद पाते, वे खुद को कमजोर समझने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनके मन में हीन भावना आने लगती है। वे सोचते हैं कि उनकी पहचान केवल चीजों से होती है। हर समय दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश बच्चों को मानसिक तनाव देती है। वे छोटी उम्र में ही कशिश चिंता और दबाव महसूस करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और कई बच्चे सोशल मीडिया पर लाइक और तारीफ के पीछे परेशान रहने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: दिखावे की आदत बच्चों को सच छिपाने की ओर ले जा सकती है। कुछ बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति या जीवन को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ताकि लोग उन्हें कम न समझे। जब बच्चा हर समय श्रोता साथियों दूसरों जैसे बनने की कोशिश करता है, तब वह अपनी असली पहचान भूलने लगता है। वह यह समझ नहीं पाता कि उनकी अपनी खूबियां क्या हैं। तो इस तरीके से हम ये जान पाए कशिश कि दिखावे का असर बच्चों के मानसिक स्थिति पर कैसे पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: आगे हम जानेंगे सामाजिक असर और क्या साथ की पुरानी चीज बन गई है उनको लेकर, और इन सारी चीजों को लेकर हम हमारे बच्चों को कैसे बचाएं। लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी हाँ अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि बच्चों में दिखावे की आदत क्यों बढ़ रही है और साथ ही हम ये जान पाए कि इसके क्या मानसिक नुकसान होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यही बात करें सामाजिक असर की, तो कशिश दिखावा बच्चों में तुलना की आदत बढ़ाता है, अपनी दोस्ती को व्यवहार से नहीं बल्कि चीजों से आंकने लगते हैं।
1: जी जी।
0: श्रोता साथियों, जब बच्चे केवल स्टेटस और दिखावे को महत्व देने लगते हैं तब रिश्तों की सच्चाई कम होने लगती है, दोस्ती स्वार्थ और प्रतियोगिता में बदल सकती है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ बच्चे महंगी चीजें पाने के लिए गलत रास्ते भी चुन सकते हैं और छोटी उम्र में चोरी, झूठ या जिद जैसी आदत भी बढ़ जाती है।
1: जी हाँ अंजलि जी,
0: कहना चाहेंगे कशिश कि जो बच्चे साधारण परिवार से आते हैं वे खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं, इससे उनका आत्मबल कमजोर हो सकता है और कई बार वे पढ़ाई और प्रतिभा से ज्यादा बाहरी चीजों को महत्व देने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कह सकते हैं कि इस तरीके से बच्चों में अगर दिखावे की संस्कृति बढ़ती है तो ये कुछ सामाजिक असर हैं वो हमें देखने को मिल पाते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, अब यही बात करते हैं कि क्या सादगी पुरानी चीज बन गई है। दोस्तों, अगर ये प्रश्न हमारे सामने आया है तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सादगी कभी पुरानी नहीं होती। अंजलि जी, असल में तो सादगी इंसान को मजबूत बनाती है। जो बच्चा अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना सीखता है वही आगे चलकर मानसिक रूप से मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, महान लोगों का जीवन अगर हम देखते हैं तो उनमें सादगी, मेहनत और व्यवहार

0: बच्चे वही सीखते हैं कशिश जो वे घर में देखते हैं। इसलिए अगर बड़े भी सादगी अपनाएंगे तो बच्चा भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को यह भी समझना जरूरी है श्रोता साथियों कि सोशल मीडिया पूरी सच्चाई नहीं दिखाता, वहाँ केवल चमक दिखाई जाती है। उनकी कला, मेहनत, व्यवहार और अच्छे गुणों की तारीफ हमें करनी है, केवल बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। बच्चों को गांव, प्रकृति, समाज, सामाजिक गतिविधियों और सामूहिक खेलों से भी जुड़ना जरूरी है, इससे वे वास्तविक जीवन को समझ पाते हैं। श्रोता साथियों, स्कूलों को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन मूल्यों की शिक्षा भी देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को सहयोग, सादगी, संवेदनशीलता और आत्मसम्मान की सीख देना जरूरी है। इसी के साथ समाज को भी कशिश बच्चों को उनकी आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना है, हर बच्चे को सम्मान और अवसर मिलना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि साथियों, बच्चों में बढ़ती दिखावे की आदत केवल फैशन का मामला नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ये उनके मानसिक विकास के साथ साथ आत्मविश्वास और सामाजिक सोच को भी प्रभावित करने वाला एक विषय है। अगर अंजलि जी समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे बाहरी चमक में उलझकर अपने असली गुणों और खुशियों से दूर हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में एक माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों को यही सिखाना होगा साथियों कि जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान महंगी चीजें नहीं बल्कि अच्छा चरित्र, सच्चाई, मेहनत और संवेदनशीलता होती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस बच्चे के भीतर दोस्तों आत्मसम्मान और संतोष होगा वही जीवन में सच्ची सफलता और खुशी प्राप्त कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हम सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ साथियों हमारे बच्चे दिखावे की दौड़ में नहीं बल्कि अपने सपनों की प्रतिभा, अपने अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़े, और यही अंजलि जी एक स्वस्थ समाज और मजबूत भविष्य की सही दिशा होगी।
0: बिल्कुल, तो कशिश जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरीके से बच्चों के अंदर दिखावे की संस्कृति बढ़ रही है और उसका प्रभाव किस तरीके से उन पर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन और हमारी बातें अब यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करूँ, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपने धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो फागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो हमारे आज से कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे हमारे डैम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है गांव विस्तार माते पशुधन स्वास्थ्य ने टीकाकरण नी हूँ आवश्यकता है आनु हूँ उद्देश्य है ने आंत की हूँ लाभ थे सके। तो भाई बोनो अण विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तकी घना कानी वाते थाएंगा पन कार्यक्रम शुरू करा इन पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमरते रहसू आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वाकड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: आने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो रोग एक तरह का बोझ होता है, चाहे वो किसी को भी हो।
1: बिल्कुल।
0: सामान्य रूप से हमको भी सामान्य सिर दर्द होता है तो हमारे मन में ये भावना आती है कि हे प्रभु, ये सिर दर्द क्यों है, ये नहीं होता तो मैं कुछ बेहतर कर लेता, मैं काम निपटा लेता। तो इसी तरह से जब हमारे पशुधन पे भी कोई रोग या बीमारी आती है तो वो उस पे बोझ हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: तो इसका एक कारण ये भी है कि पशु चिकित्सा सेवाओं तक जो है हमारी, यानी कि पशुपालकों की पहुंच जो है सीमित है, और इसी के कारण बीमारियों का बोझ उन्हें झेलना पड़ता है। जैसे यदि अभी आने वाले समय में भी हम बात करें तो इस समय, क्योंकि अब बारिश का समय नजदीक है और ये समय है खुरपका मुंहपका यानी कि FMD का टीका लगवाने का, तो इसके कारण जो हमारे पशुधन को तकलीफ होती है वो खड़े होने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि उनके खुर जो है पक जाते हैं, उनमें से मवाद आने लगता है और वो पांव को टिका नहीं पाते। इसी के साथ साथ इसके जो विषाणु हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करके उनके मुंह में भी घाव और सूजन बना देते हैं, जिससे वो खा नहीं पाते। तो इतनी घातक बीमारी को होने से रोकने का बहुत आसान उपाय है कि बस अब हम हमारे पशुधन के टीकाकरण में जो है FMD का टीका जरूर लगवाएं। हमारे जो भी मादा पशुधन हैं उनमें ब्रुसेलोसिस और बोवाइन के टीके भी जो है हमको लगवाना चाहिए, तो ये इनको तपेदिक जैसी बीमारियों से भी जो है बचाते हैं। और सभी तरह से यदि बोला जाए तो क्योंकि पशु चिकित्सा सेवाएं बहुत न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हैं या लगभग मुफ्त हैं, तो इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा के हम हमारे पशुधन के रोग बोझ को कम कर सकते हैं और हमारे पशुपालकों के आर्थिक बोझ को भी कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य जांच जो ग्राम स्तर पर होती है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है और उसके क्या फायदे होते हैं। यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए क्या क्या गतिविधियां की जाती हैं और उसके क्या अपेक्षित परिणाम हमें मिल पाएंगे।
0: तो यदि हम स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के लिए गतिविधियों की बात करें तो पहला तो होगा कि हम स्वास्थ्य जांच और निदान के लिए जो है उन समस्याओं की पहचान करें जिसके लिए हमारे पशुधन का जो है स्वास्थ्य जांच और निदान करवाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम जो पहचानी गई स्थितियां हैं उसके अनुसार भी बाकी हमारे जो गांव के किसान हैं उनके साथ भी बात कर सकते हैं कि क्या उनके पशुधन में भी इस तरह की स्थितियां चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से देखी जा रही है या उनको ऐसा लग रहा है क्या। तो इसी के साथ में जो है टीकाकरण अभियान के रूप में हम जो है इसको ले सकते हैं ग्राम स्तरों पे।
1: बिल्कुल।
0: तो जो भी प्रचलित बीमारियां हैं जिनके खिलाफ टीके जिस समय पे लगाए जाते हैं, तो एक तो किसानों को जो है अपने स्तर पे उसका रिकॉर्ड रखने की थोड़ी सी आदत रखना होगी, ताकि उन्हें ये पता रहे कि ये वाला टीका लग चुका है और ये वाला टीका बाकी है, क्योंकि कुछ टीके ऐसे हैं जिनको साल में 2 से 3 बार तक लगवाना पड़ता है, यानी कि उनका बूस्टर डोज दिया जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा वो उसके लिए या तो कहीं पर लिख के रख लें कि ये टीका लग चुका है और अब कितने समय के बाद वापिस इसको लगवाना है। तो यदि ग्राम स्तर पे सारे पशुपालक मिल के इस तरह के आयोजन करते हैं कि वो या तो एक जगह पे अपने पशुधन को इकट्ठा कर लें और जो पशु स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सूचित करें कि हम इस दिन अपने सारे पशुधन को इकट्ठा करेंगे, तो वहां पे आप आके उनका स्वास्थ्य जांच कर लीजिए, उसके जो निदान हो सकते हैं वो कर दीजिए, और इसी के साथ में उस समय पे होने वाले टीकाकरण के लिए भी जो है हम हमारे पशुओं को इकट्ठा करेंगे, तो आप टीका भी लेके आइए। क्योंकि टीकाकरण भारत सरकार ने भी जो है अनिवार्य रूप से एक बड़े अभियान के रूप में लिया है, तो हमारे पशुपालकों को भी जो है इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कुछ स्तरों पे हो सकता है कि हमें किसानों के लिए कार्यशालाएं करना हो, हम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इसमें मदद कर सकती हैं, इसी के साथ साथ में पशु स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो स्वयंसेवी संस्था उनके सहयोग से इसको मिलके कर सकते हैं, कार्यशालाओं का आयोजन जिसमें हमारे पशुधन के स्वास्थ्य प्रबंधन को लेके बात हो, बीमारियों की रोकथाम को लेके बात हो, उनके उचित खान पान और समय समय पे क्या दिया जाना चाहिए, उनके पोषण में क्या चीजें होना चाहिए, पशुशालाओं में स्वच्छता प्रबंधन किस तरह से हो, इसके लिए जो है एक समय में या अलग अलग समय में हम छोटे छोटे अंतराल पे छोटे समय के लिए थोड़े समय के लिए उनके उपलब्ध समय के अनुसार जो है उन कार्यशालाओं का आयोजन यदि लगातार करते हैं तो इससे किसानों को जो है ये पता रहेगा कि उनको कब किस तरह से क्या अपने पशुधन के स्वास्थ्य और हित में निर्णय लेना है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से गांव स्तर पर पशु स्वास्थ्य और टीकाकरण की आवश्यकता को हमें बढ़ावा देना चाहिए और क्या क्या गतिविधि करनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को हमें बताया है, तो हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके से अगर ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है तो मवेशियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उच्च टीकाकरण की दरें हैं वो बढ़ जाएंगी, इसी के साथ किसानों का ज्ञान भी बढ़ेगा और मजबूत पशु चिकित्सा सेवाएं भी पशुओं को मिल पाएंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ढेर सारे फायदे होंगे अगर गांव स्तर पर हम इन सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं और समय पर पशुधन के स्वास्थ्य और खान पान की चीजों को महत्व देते हैं। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाई बोनो, जिम के अवड़े अपने वैसे मनीष जी जुड़े तक हता ने एने अपना ने घना कनी बातें बताड़ी हैं कि ग्राम स्तर माते हरते अपना ने टीकाकरण ने वदा वो आलवो होगा ने इन तकी हूँ फायदा थे सके। तो आशा कर रहा हूँ कि हंगरी बातें आपने गमी होंगे क्योंकि अभी टाइम थे गयो है अपने अनस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वा। तो सूटा तो पड़ा पर साथ पहले हमारी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है किताबों से सीख सकते हैं आर्थिक मजबूती, यानी कि श्रोता साथियों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। और ये समझ हमें सबसे अच्छी गुरु यानी कि किताबों से मिलती है अंजलि। किताबें केवल शब्दों का संग्रह नहीं होता बल्कि वे अनुभव का खजाना होता है। एक अच्छी किताब हमें उन गलतियों से बचा सकती है जो लोग वर्षों में सीखते हैं। आर्थिक मजबूती केवल ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती श्रोताओं, बल्कि सही सोच, सही योजना और सही निर्णय से आती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में इसी विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी। जानेंगे कि किस तरीके से किताबों के माध्यम से हम आर्थिक मजबूती की जो चीजें हैं वो सीख पाते हैं। बातें ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत के दस्तूर को निभाते हुए जागृति जी हम श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि, गीत से पहले हमने विषय बताया था और कुछ बातें रही थी इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमने जाना था किताबों से सीख सकते हैं आर्थिक मजबूती को। तो श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आज दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने किताबों से सीखकर अपनी जिंदगी बदल दी। किसी ने बचत करना सीख लिया अंजलि, किसी ने निवेश करना सीख लिया, तो किसी ने छोटा व्यवसाय शुरू करके सफलता हासिल की।
1: बिल्कुल,
0: वित्तीय साक्षरता यानी पैसों को समझने की क्षमता व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। बजट बनाना, बचत करना और भविष्य की योजना बनाना आर्थिक मजबूती के मुख्य आधार माने जाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज के समय में हर व्यक्ति चाहते हैं कि उनका जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बने।
0: बिल्कुल,
1: हर परिवार चाहता है श्रोता साथियों कि उनके घर में आर्थिक तंगी न हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो, बीमारी आने पर परेशानी न हो और भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन जागृति जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि आर्थिक मजबूती केवल व्यापारियों, पढ़े लिखे शहरों के लोग और अधिक कमाने वाले लोगों के लिए ही संभव है।
0: बिल्कुल,
1: जबकि श्रोता साथियों, सच यह है कि आर्थिक मजबूती की शुरुआत ज्ञान से होती है और ज्ञान का सबसे सरल, सस्ता और भरोसेमंद माध्यम है किताबें।
0: जी हाँ,
1: किताबें केवल कहानी या मनोरंजन का साधन नहीं होती है श्रोता साथियों, बल्कि वे जीवन जीने की समझ देती है। किताबें हमें ये सिखाती हैं जागृति जी कि कम पैसे में भी समझदारी से कैसे जीवन चलाया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: बचत कैसे की जाए, मेहनत को सही दिशा में कैसे किया जाए और कर्ज से कैसे बचा जाए और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूती कैसे बनाई जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, आर्थिक मजबूती को लेकर हम बताएं हमारे श्रोता साथियों को, तो श्रोता साथियों, आर्थिक मजबूती का अर्थ केवल अमीर होना नहीं होता, जरूरत के समय पैसे की कमी न होना, कर्ज से बचना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, अपने सपनों को पूरा करना और सम्मान के साथ जीवन जीना।
1: बिल्कुल,
0: आज कई लोग अच्छी कमाई के बावजूद परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसों का सही प्रबंधन नहीं आता। वहीं कुछ लोग कम आय में भी खुश और सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उन्होंने आर्थिक अनुशासन सीखा होता है। किताबें हमें यही अनुशासन सिखाती है, फिर बताती है कि खर्च और जरूरत में क्या फर्क है। कहा गया अंजलि कि कमाई बड़ी नहीं, समझ बड़ी होती है।
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक सफलता सोच से ही पैदा होती है। इसलिए श्रोता साथी, आपसे यही कहना चाहेंगे कि कई प्रेरणादायी किताबें बताती है कि छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ी ताकत बनती है। अगर एक विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की आदत डाल ले तो आगे चलकर वही आदत उसे आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है।
1: बिल्कुल,
0: वित्तीय शिक्षा में बचत, बजट और खर्च नियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, यही बात करें अब कि किताबें क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, किताबें इंसान की सोच बदलती है। जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसकी समझ बढ़ती है, वह केवल आज के बारे में नहीं बल्कि आने वाले समय के बारे में भी सोचने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: किताबें हमें सिखाती हैं समय का महत्व, कैसे हमें समझना है, मेहनत का सही उपयोग हमें कहाँ करना है, बचत की आदत, छोटे व्यवसाय के तरीके, आत्मनिर्भर बनने की सोच और गलत खर्च से बचना और जीवन में अनुशासन लाना।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, जो व्यक्ति पढ़ता है वह दूसरों की गलतियों और अनुभवों से भी सीख लेता है। उसे हर सीख खुद नुकसान उठाकर नहीं लेनी पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव में आज भी कई लोग किताबों को केवल स्कूल तक सीमित मानते हैं। बहुत से लोग पढ़ाई पूरी होने के बाद किताबों से दूरी बना लेते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अगर पढ़ने की संस्कृति बनी रहे तो आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यदि किसान जो है वो खेती से जुड़ी जानकारी पढ़े जागृति जी, महिलाएं अगर स्वरोजगार और बचत समूह की जानकारी पढ़े, युवा कौशल विकास की किताबें पढ़े और बच्चे प्रेरणादायक जीवन की कथाएं पढ़े तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी।
0: जी हाँ।
1: किताबें केवल जागरूक नहीं बनाती बल्कि हमें मजबूत भी बनाती है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि किताबों से भी हम सीख सकते हैं आर्थिक मजबूती को, तो ये बातें ऐसी बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से आर्थिक मजबूती का मतलब क्या होता है और किताबें क्यों जरूरी होती है, यही बात करें कि किताबें हमें बचत करना कैसे सिखाती है। तो श्रोता साथियों, आर्थिक मजबूती की सबसे पहली सीढ़ी होती है बचत।
1: जी हाँ।
0: कई किताबों में छोटी छोटी बचत के महत्व को समझाया जाता है, जैसे कि रोज थोड़ा पैसा बचाना, जरूरत और इच्छा में अंतर समझना और दिखावे से बचना और भविष्य के लिए तैयारी करना।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों को कि बहुत से परिवार केवल इसलिए आर्थिक संकट में फंस जाते हैं क्योंकि वे बिना सोचे खर्च करते हैं। यदि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बचत का महत्व समझाया जाए तो परिवार मजबूत बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: किताबें हमें सिखाती हैं कि बचत केवल अमीर लोग नहीं बल्कि समझदार लोग करते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं होता, पैसे को सही जगह लगाना भी बहुत जरूरी होता है। कई वित्तीय किताबें हमें निवेश की बुनियादी जानकारी देती है, जैसे बैंक बचत, फिक्स डिपोजिट, ये सब। वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को सही आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और जो व्यक्ति निवेश के महत्व को समझता है वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: किताबें हमें ये भी सिखाती है कि जल्दी अमीर बनने के लिए लालच से बचना चाहिए, मेहनत, धैर्य और समझदारी ही सफलता का सही रास्ता है। इसीलिए हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे अंजलि कि जब हम संघर्ष और सफलता की कहानियां पढ़ते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: गरीबी में पढ़कर आगे बढ़ने वाले लोगों की कहानियां हमें प्रेरित करती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मेहनत और ज्ञान से सफलता पाई जा सकती है।
0: जी हाँ।
1: कई प्रेरक कहानियां साबित करती है श्रोता साथियों की शिक्षा और सीखने की आदत जीवन बदल सकती है। एक गरीब परिवार का बच्चा भी अगर पढ़ने और सीखने की आदत बना ले तो वो आगे चलकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। आजकल

0: सीखती हैं कि घर का बजट कैसे बनाना है। बचत समूह चलाना, छोटा व्यवसाय शुरू करना, सरकारी योजना का लाभ लेना, बच्चों की शिक्षा और पोषण पर सही खर्च करना।
1: बिल्कुल,
0: आज कई महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी है। इस बदलाव के पीछे जानकारी और सीखने की इच्छा सबसे बड़ी ताकत होती है।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आज का युवा घंटों मोबाइल पर समय बिताता है, अगर उसी समय का थोड़ा हिस्सा भी अच्छी किताबों को दिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। सोशल मीडिया हमें कुछ समय का मनोरंजन दे सकती है, लेकिन किताबें हमें जीवन भर का ज्ञान देती हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो युवा किताबों से जुड़ता है वो निर्णय लेने में अधिक समझदार बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग आर्थिक जानकारी के अभाव में गलत फैसले ले लेते हैं। अगर गांव में पुस्तकालय और पढ़ने की संस्कृति बढ़े तो युवा रोजगार, व्यवसाय और बचत के नए रास्ते खुल सकते हैं। अंजलि,
0: बिल्कुल,
1: किताबें युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। वे बताती है कि नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं बल्कि कौशल और छोटे व्यवसाय भी आर्थिक मजबूती दे सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी।
0: जी जी,
1: राहुल अक्सर सोचता था कि गरीबी से कैसे बाहर निकला जाए। एक दिन उसके स्कूल के शिक्षक ने उसे एक किताब दी, पैसों का सही उपयोग। राहुल ने वो किताब पढ़ी, उसने सीखा कि कम पैसों में भी बचत की जा सकती है। उसने छोटी सी डायरी बनाई और अपने खर्च लिखने लगा। धीरे धीरे उसने बचत शुरू कर दी, फिर उसने गांव में किताबें और कॉपी बेचने का छोटा काम शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वही राहुल अपने गांव का सफल व्यवसायी बन गया।
0: जी जी,
1: लोग उससे पूछते कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो राहुल मुस्कुराकर कहता अंजलि कि मेरी जिंदगी बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत मेरी किताबें हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कह सकते हैं कि किताबों ने राह दिखाई, मेहनत ने मंजिल पाई।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि किताबें केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती है, वे अनुभव, ज्ञान और जीवन की दिशा देने वाली साथी होती है।
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक मजबूती पाने के लिए केवल अधिक कमाना जरूरी नहीं होता है श्रोता साथियों, बल्कि समझदारी से जीवन जीना जरूरी है। यह समझ किताबों से विकसित होती है। जब गांव का किसान जानकारी पढ़ेगा, महिलाएं आत्मनिर्भरता की सीख लेंगी, युवा रोजगार के नए रास्ते समझेंगे और बच्चे प्रेरणादायक जीवन मूल्यों को अपनाएंगे, तब सच्चे अर्थों में समाज मजबूत बनेगा।
1: जी हाँ,
0: आर्थिक मजबूती बैंक खाते में जमा पैसों से नहीं आती, बल्कि जागरूक सोच, सही निर्णय और लगातार सीखते रहने की आदत से आती है। इसलिए जरूरत है श्रोता साथियों कि हम किताबों को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रखें, बल्कि जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो समाज पढ़ता है वही समाज आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: और जो व्यक्ति सीखता रहता है वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने लिए नए अवसर बना लेता है। यही सच्चे स्वराज की पहचान है कि जागरूक नागरिक, आत्मनिर्भर परिवार और मजबूत समाज बना रहे।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आर्थिक मजबूती केवल धन कमाने से नहीं आती बल्कि सही ज्ञान से आती है, और ये ज्ञान किताबों के माध्यम से सबसे सरल और सशक्त रूप में मिलता है।
0: जी हाँ,
1: जो व्यक्ति पढ़ने की आदत डालता है वो जीवन भर सीखता रहता है। किताबें हमें धैर्य देती है, अनुशासन देती है, बचत करवाती है, निवेश और आत्मविश्वास सिखाती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम सच में आत्मनिर्भर और मजबूत भारत बनाना चाहते हैं श्रोता साथियों, तो हमें पढ़ने की संस्कृति को अपनाना होगा। हर घर में किताबें हो, हर युवा सीखने के लिए तैयार हो, तभी सच्चे अर्थों में आर्थिक स्वराज आएगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि धन से पहले ज्ञान को कमाइए, किताबों से जीवन को सजाइए, और जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है।
0: जी हाँ,
1: ज्ञान ही आर्थिक मजबूती का सच्चा रास्ता है। तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि किताबों से दोस्ती कीजिए, क्योंकि यही दोस्ती हमारे भविष्य को मजबूत बना सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर हाजिर होते हैं तो बात करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर जो कि हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ होता है और हमारी अच्छी आदतों से भी जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज के इस कार्यक्रम में हम नए विषय को लेकर हाजिर हैं। आज का हमारा विषय है कि सेहतमंद खाना बार बार की बीमारियों और अस्पतालों के चक्कर से कैसे बचाता है। हम देखते हैं मनीषा कि ऐसा कहा जाता है कि अगर खानपान हमारा सही हो तो हमारा शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन वर्तमान में हमारी जीवन शैली काफी बिगड़ चुकी है। हम देखते हैं कि लोग घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना यानी कि जो जंक फूड होता है उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं, जिसके कारण आए दिन वे अस्पतालों के और डॉक्टर्स के चक्कर लगाते ही रहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि किस प्रकार से सेहतमंद खाना जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और बार बार होने वाली बीमारियों से हमें कैसे बचाता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं,
1: जी हाँ,
0: सेहतमंद खाना बार बार की बीमारियों और अस्पतालों के चक्कर से हमें कैसे बचाता है।
1: बिल्कुल
0: कोशिश, हम देखते हैं कि मनुष्य का शरीर प्रकृति की सबसे अनमोल देन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन की हर कठिनाइयाँ छोटी लगने लगती हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो हमें सुख सुविधाएं भी बेकार लगती हैं। आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है बार बार बीमार पड़ जाना।
1: जी जी।
0: श्रोता साथियों, छोटी सी उम्र में थकान, कमजोरी, मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप और पाचन संबंधी समस्या बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बिगड़ती खान पान की आदतें। कोशिश, हम देखते हैं कि आज लोग स्वाद और सुविधाओं के पीछे भागते हुए पोषण को भूलते जा रहे हैं। बाजार का तला भुना खाना, पैकेट वाली चीजें खाना, अधिक चीनी और तेल वाले पदार्थ धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर बना देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी ओर हम देखते हैं कि संतुलित और पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को ताकत देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और अस्पतालों के चक्कर से भी हमें बचाता है। इसीलिए श्रोता साथियों, कहा जाता है कि अच्छा भोजन ही सबसे बड़ी दवा है।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि आज के समय की जो जिंदगी है वो काफी तेज हो चुकी है।
0: जी बिल्कुल।
1: लोग काम के दबाव, भागदौड़, तनाव और समय की कमी के कारण अपने खानपान पर कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कई लोग तो हम देखते हैं कि सुबह का नाश्ता भी छोड़ देते हैं साथियों।
0: जी।
1: और उसकी जगह पर बाहर का तला भुना खाना खाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो लोग हैं ज्यादा मीठे पेय पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन भी करने लगे हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो भी हमें होने लगी है।
0: बिल्कुल।
1: कभी हम देखते हैं कि हमारा पेट खराब रहता है तो कभी हमारे सिर में दर्द रहता है, कभी श्रोता साथियों कमजोरी या थकान रहती है तो कभी हमें बुखार की समस्या हो जाती है।
0: जी,
1: देखते हैं कि कई बार ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो कब बड़ी समस्या का रूप ले लेती है हमें पता ही नहीं चलता है दोस्तों, और फिर हमें अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
0: बिल्कुल कशिश।
1: लेकिन यदि इसके विपरीत देखें कि हमारा भोजन संतुलित, ताजा और पौष्टिक होगा तो हम कई बीमारियों से खुद को बचाकर रख सकते हैं साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि स्वस्थ भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता बल्कि शरीर को ताकत देने वाली सबसे बड़ी दवा भी होती है मनीषा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि महंगा खाना ही पौष्टिक भोजन होता है, लेकिन दोस्तों ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है। स्वस्थ भोजन वह है जिसमें शरीर को जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हो, जैसे कि अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध और दही, सूखे मेवे और पर्याप्त पानी। साथियों, जब भोजन में ये सारी चीजें संतुलित मात्रा में शामिल होती है तब शरीर मजबूत बनता है और मनीषा रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारी मजबूत होती है।
0: जी बिल्कुल कशिश। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज करते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: काम का दबाव, समय की कमी और सुविधाओं के कारण लोग जल्दी बनने वाले भोजन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बच्चे घर के खाने से अधिक पिज्जा, बर्गर, नूडल्स पसंद करने लगे हैं। युवा वर्ग रात तक जागते हैं और अनियमित भोजन करते हैं। कई लोग हम देखते हैं कि सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और दिन भर चाय और फास्ट फूड पर निर्भर हो जाते हैं। श्रोता साथियों, इन आदतों का असर धीरे धीरे हमारे शरीर पर दिखाई देने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: शरीर हमारा कमजोर हो जाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कशिश, वो भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हम देखते हैं कि व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगता है, फिर अस्पतालों के वो चक्कर शुरू कर देता है। यदि समय रहते खान पान सुधारा जाए साथियों तो हम कई बीमारियों को शुरुआत में ही रोक सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो सेहतमंद खाना होता है वो हमें कई बीमारियों से बचाता है।
0: जी हाँ।
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: जन्म।
1: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे हमारे विषय की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है कि सेहतमंद खाना बार बार की बीमारियों और अस्पतालों के चक्करों से हमें बचाता है। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि स्वस्थ भोजन क्या होता है और ये हमारे सेहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। अगर यही बात करें मनीषा की शरीर को बीमारी से कैसे बचाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और ये ऊर्जा हमें श्रोता साथियों सही भोजन से मिलेगी। लेकिन दोस्तों केवल पेट भर लेना पर्याप्त नहीं होता, शरीर को विटामिन, प्रोटीन्स और आयरन की भी जरूरत होती है। देखते हैं कि यदि सही भोजन होगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।
2: बिल्कुल,
1: संक्रमण जल्दी नहीं होगा, हमें थकान कम होगी मनीषा और शरीर भी हमारा सक्रिय रहेगा। इसी के साथ ही मानसिक तनाव भी कम होगा दोस्तों और हमें नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब शरीर अंदर से मजबूत होता है तब छोटी छोटी बीमारियां जल्दी असर नहीं करती है। और जैसा कि आपने गीत से पहले भी बताया था साथियों को कि आजकल खानपान हमारा इतना बिगड़ चुका है जिसका असर सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है, उनमें कई बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों जंक फूड का बढ़ता चलन भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। साथ ही समय पर भोजन न करना भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण हम आए दिन बीमारियों से घिरे रहते हैं।
2: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि बीमारियां केवल शरीर को ही नहीं बल्कि जेब को भी प्रभावित करती हैं।
1: बिल्कुल,
2: अस्पतालों का खर्च आज बहुत बढ़ चुका है। यदि व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है तो दवाइयों और इलाजों में हजारों रुपए खर्च कर देता है।
1: बिल्कुल,
2: इसके विपरीत वो पौष्टिक भोजन अपेक्षाकृत सस्ता और लाभदायक होता है हमारे लिए। श्रोता साथियों, अच्छा भोजन भविष्य की बीमारियों और खर्च दोनों को बचा सकता है, इसलिए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा श्रोता साथियों कि सेहतमंद भोजन कई प्रकार का निवेश हमारे लिए करता है। साथ ही कोशिश हम देखते हैं कि आज लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। रेडियो, स्कूलों, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से पौष्टिक भोजन महत्व को वे समझ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: सरकारों और समाज को मिलकर बच्चों और युवाओं को जंक फूड के नुकसानों को बताना चाहिए। परिवार में भी भोजन को लेकर सही आदतें विकसित करनी चाहिए।
1: बिल्कुल
2: साथियों, जब समाज स्वस्थ भोजन को अपनाएगा तभी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव होगा।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों इसमें मोटा अनाज और पारंपरिक भोजन का भी महत्व अधिक है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश के कई हिस्सों में श्रोता साथियों पहले बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी खूब उपयोग में लिया जाता था और इसका सेवन भी खूब किया जाता था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आज लोग इन पारंपरिक भोजन और मोटे अनाज को भूलते जा रहे हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए काफी पौष्टिक है।
2: जी,
1: हम देखते हैं कि अगर इनका सेवन हम करते हैं तो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। मधुमेह हमारा नियंत्रित रहता है साथियों, पाचन हमारा अच्छा बना रहता है और शरीर मजबूत बनता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि बाजरे की रोटी, छाछ और लहसुन की चटनी जैसे जो पारंपरिक भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है, तो हमें इनका सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही अगर बात करें तो हम देखते हैं कि पहले गांवों में लोग ताजा और प्राकृतिक भोजन खाते थे, लेकिन आज गांवों में भी बाजार का पैकेट वाला भोजन बढ़ता जा रहा है, जो कि श्रोता साथियों चिंता का विषय है। ऐसे में हमें अपनी पारंपरिक भोजन की संस्कृति को बचाना होगा और ढेर सारे प्रयास करने होंगे, जैसे कि लोगों को हमें पारंपरिक भोजन के प्रति जागरूक करना होगा, मोटे अनाज के सेवन को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि दोस्तों यदि शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति हर काम कर सकता है। लेकिन बार बार बीमार पड़ने वाला व्यक्ति न तो ठीक से काम कर पाता है और न ही जीवन का आनंद ले पाता है मनीषा, इसलिए श्रोता साथियों स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। आपसे कहना चाहूंगी कि बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका सही भोजन है। हम जो खाते हैं साथियों वही हमारे शरीर और जीवन को बनाता है, क्योंकि स्वाद के पीछे भागने के बजाय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की है दोस्तों कि हम फिर से अपने पारंपरिक और पौष्टिक भोजन की ओर लौटें। घर का साधारण भोजन, समय पर खाना, पर्याप्त पानी और साथ ही नियमित दिनचर्या हमें अस्पतालों के चक्कर से बचा सकती है।
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सेहतमंद भोजन केवल शरीर की जरूरत ही नहीं बल्कि अच्छे जीवन की भी आधारशिला है।
1: बिल्कुल,
2: सही खान पान व्यक्ति को मजबूत बनाता है, रोगों से बचाता है और अस्पतालों के चक्कर को भी कम करता है।
1: जी हाँ।
2: श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि लोग स्वाद से अधिक स्वास्थ्य को महत्व दें। यदि हम अपने भोजन में पौष्टिक चीजें शामिल करें और समय समय पर भोजन करें और जंक फूड को दूर करें, तो श्रोता साथियों हमारा जीवन में वो अधिक स्वस्थ रहेगा और खुशहाल बन सकता है। इस तरह से कशिश हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और इस संपत्ति की रक्षा करना सबसे सरल उपाय है संतुलित और सेहतमंद भोजन। इसीलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अच्छा भोजन केवल पेट ही नहीं भरता बल्कि जीवन को सुरक्षित और सुंदर बनाता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
2: जी
1: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
2: बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ।

0: क्या करूं।
1: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ,
2: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
1: बिल्कुल,
2: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ,
2: तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे एक नए प्रेरणादायक विषय को लेकर बातचीत करते हैं, जो हमारे जीवन में हमारे भविष्य के साथ साथ हमारे सपनों को भी उड़ान देता है। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे अच्छे चरित्र की ताकत को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रोता साथियों कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी पूंजी अगर मानी जाती है तो वो है उसका चरित्र। कहा जाता है कि जिसका चरित्र सही है वह व्यक्ति हर क्षेत्र में सम्मान पाता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों इसी विषय को लेकर मेरी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम में गीत संगीत का भी दस्तूर बना रहता है हमारा, तो आइए पहले मनोरंजन कर लेते हैं इस गीत के साथ में, फिर हमारी बातचीत की हम फिर से शुरुआत करेंगे।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए मैं बढ़ना चाहूंगी कार्यक्रम में विषय की ओर। जैसा कि सपनों की उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से आज का हमारा विषय है अच्छे चरित्र की ताकत को लेकर। दोस्तों, गीत से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के जीवन में यदि कोई सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है तो वह है उसका चरित्र। साथियों, धन, पद, प्रतिष्ठा और शक्ति साथ ही ज्ञान तो तभी सम्मान दिलाते हैं जब चरित्र अच्छा होता है। अच्छे चरित्र वाला इंसान जो होता है दोस्तों, वह हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहना जानता है। उसे पता होता है कि उसे सफलता कैसे मिलेगी। साथ ही उसके व्यवहार को लेकर अगर बताऊं आपको तो व्यवहार भी दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण रहता है। उसके विचार सकारात्मक होते हैं, साथ ही कार्य भी दोस्तों समाज के लिए हमेशा प्रेरणा ही बनते हैं। हम देख सकते हैं कि इसी कारण से कहा जाता है कि चरित्र ही मनुष्य की असली पहचान है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के समय में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, प्रतियोगिता बढ़ रही है, लोग सफलता पाने के लिए अनेक रास्ते अपनाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोग आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनका चरित्र कैसा है? आपको बताना चाहूंगी कि जो सफलता अच्छे चरित्र के बिना मिलती है वह अधिक समय तक टिक नहीं पाती। वहीं श्रोता साथियों, ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत से प्राप्त सफलता जीवन को सच्चा सम्मान देती है। हम देख सकते हैं साथियों कि चरित्र मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ विचार, आदतों और मूल्यों का भी वह रूप होता है जो उसके व्यक्तित्व को पहचान देता है। किसी व्यक्ति का चरित्र इस बात से नहीं पहचाना जाता साथियों कि वह लोगों के सामने कैसा दिखता है, बल्कि इस बात से पहचाना जाता है कि वह अकेले में कैसा व्यवहार करता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है साथियों, दूसरों की सहायता करता है, अनुशासन में रहता है और गलत कामों से बिल्कुल दूर रहता है, साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी अगर अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता तो उसे अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। हम देखते हैं कि चरित्र कभी एक दिन में नहीं बनता, यह छोटी छोटी आदतों, नए नए संस्कारों, अनुभवों और जीवन के संघर्षों से ही धीरे धीरे विकसित होता है। साथियों, जिस प्रकार से एक पौधा समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म भी मिलकर एक मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि अच्छे चरित्र की सबसे बड़ी ताकत विश्वास से शुरू होती है, क्योंकि दोस्तों अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति पर लोग आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। क्योंकि विश्वास, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि वह शक्ति है जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है। साथियों, वो परिवार हो, मित्रता हो या कार्यस्थल का क्षेत्र हो, हर जगह विश्वास की जरूरत होती ही है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है उसकी बातों में सच्चाई भी देखी जाएगी, लोग उसकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को समाज में सम्मान भी मिलता है। साथियों, यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि धन अगर खो जाए तो वापस जरूर कमाया जाता है, स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाए तो उसका इलाज जरूर करवाया जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र खराब हो जाए साथियों तो विश्वास भी टूट जाएगा और उसे दोबारा बनाना हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। तो जैसा कि मैं कार्यक्रम के माध्यम से बात आपसे कर ही रही हूँ कि किस प्रकार से हम अपने चरित्र को बेहतर बना सकते हैं और चरित्र की ताकत क्या होती है, तो आगे भी ये बातें जरूर होंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि आपको एक और गीत सुनाया जाए। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें अच्छे चरित्र को लेकर चल रही हैं और गीत से पहले हम जान पाए थे कि अच्छे चरित्र की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है। अब अगर बात करूं दोस्तों कि सपनों को सच करने में अच्छे चरित्र की क्या भूमिका मानी जाती है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जो युवा हैं वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम डॉक्टर बनने की चाह रखते हैं, कोई शिक्षक बनना चाहता है तो कोई कलाकार, वैज्ञानिक या फिर अधिकारी। लेकिन दोस्तों केवल सपना देखना काफी नहीं होता, सपनों को सच करने के लिए धैर्य भी होना चाहिए और धैर्य के साथ साथ अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ये जो गुण होते हैं वही अच्छे चरित्र की पहचान माने जाते हैं। अगर आपको बताऊं तो एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं साथियों कि जो विद्यार्थी मेहनत और सच्चाई से पढ़ाई करता है वह जीवन में आगे ही बढ़ेगा, और वहीं जो युवा गलत रास्तों से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसकी सफलता अस्थायी होगी। दोस्तों अच्छा चरित्र व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती है ना, तब चरित्र ही इंसान को टूटने नहीं देता। हम कह सकते हैं कि अच्छा चरित्र आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होगा तो उसे किसी भी बात का डर नहीं रहेगा और वह खुलकर अपने जीवन को जी पाएगा। और वहीं इसके विपरीत अगर देखें तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा डर में ही रहेगा कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। वहीं सच्चे और स्पष्ट विचार वाला व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रूप से मजबूत होता है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दिखावे से कभी नहीं आएगा, बल्कि हमारे भीतर की सच्चाई और अच्छाई से ही आता है। दोस्तों अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति असफलताओं से कभी घबराता नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है, और हम देखते हैं कि वो एक न एक दिन सफलता तो जरूर पा ही लेता है। अगर समाज में अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति की पहचान को हम जाने दोस्तों, तो देखा जाता है कि एक अच्छे समाज का निर्माण अच्छे चरित्र वाले लोग ही कर सकते हैं। यदि नागरिक ईमानदार है, जिम्मेदार है और संवेदनशील भी है तो समाज में शांति और विकास बना रहेगा। हम देखते हैं साथियों कि आज समाज में कई समस्याएं हैं, जैसे कि धोखाधड़ी, असहिष्णुता, हिंसा। इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं चरित्र की कमजोरी ही है। यदि लोग अपने नैतिक मूल्यों को मजबूत करें साथियों, तो समाज की कई परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि दूसरों के सुख दुख को भी समझेगा। हम कह सकते हैं दोस्तों कि वह समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भाव फैलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हम जान ही रहे हैं कि अगर हमारे अंदर अच्छे चरित्र वाले गुण हैं, तो हम समाज में सम्मान लायक हैं और लोग हम पर विश्वास भी करेंगे। कह सकते हैं कि अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति में ढेर सारे गुण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईमानदारी का गुण, अनुशासन का गुण, विनम्रता का गुण, जिम्मेदारी और धैर्य का गुण। दोस्तों जब हमारे अंदर ये सारे गुण होते हैं तो हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ पाते हैं, समय और नियमों का सम्मान हम कर पाते हैं और सफल होने पर कभी हमें घमंड भी नहीं रहता। साथ ही दूसरों की मदद करने के लिए भी हम अक्सर तैयार रहते हैं।

में कहते थे कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि युवाओं को हमेशा अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। उनका मानना था साथियों कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि मजबूत चरित्र बनाना भी होता है। तो इस तरीके से इन महान व्यक्तियों की सफलता का सबसे बड़ा आधार श्रोता साथियों उनका चरित्र ही था। हम कह सकते हैं कि अच्छे चरित्र का निर्माण सबसे पहले परिवार से ही शुरू होता है। अगर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और उनके जीवन की दिशा खुद तय करते हैं, तो कह सकते हैं कि बच्चे आगे जाकर समाज निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। यदि श्रोता साथियों घर में सम्मान, प्रेम, अनुशासन और सच्चाई का वातावरण होगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। हम कह सकते हैं साथियों कि अच्छे चरित्र का सबसे बड़ा पुरस्कार मन की शांति होती है। ऐसा व्यक्ति जो रात को चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई अपराध बोध नहीं होता। समाज में सम्मान, रिश्तों में विश्वास और जीवन में संतोष। साथियों ये जो तीनों चीजें हैं, यही चरित्र की असली देन है। भले ही अच्छे रास्ते पर चलना कभी कभी आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है दोस्तों, जो सच्चाई और नैतिकता का साथ नहीं छोड़ते। याद रखें, अच्छा चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह व्यक्ति को केवल सफल नहीं बनाता दोस्तों, बल्कि उसे सम्मानित और प्रेरणादायक भी बनाता है। सपनों की उड़ान तभी ऊंची होती है जब उसके पंख ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से बने हो। आज आवश्यकता इस बात की है दोस्तों कि हम केवल बाहरी सफलता के पीछे न भागें, बल्कि अपने भीतर के चरित्र को भी मजबूत करें। क्योंकि सुंदर व्यक्तित्व से लोग प्रभावित जरूर होते हैं, लेकिन अच्छे चरित्र से लोग हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं साथियों। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी मेरी आपसे पूरी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी साथियों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अभी ही समाप्त होता है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि चरित्र वह प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है। जिसके पास अच्छा चरित्र है वही सच्चे अर्थों में सबसे शक्तिशाली इंसान है। इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा दोस्तों, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
0: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
3: होवे आज नाना ना कदम है ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आज जाने

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।